0: On that note, viewers, we are starting the bulletin with our focus on the current updates coming in from Jharkhand. Well, the protests, of course, continue. And at the same time, more arrests in Jharkhand exam scam is also seen. Five more arrested in the Jharkhand exam scam is what we're looking at. Jharkhand CID, meanwhile, arrests five accused in the exam scam. Total of 19 arrests so far in the Jharkhand exam fraud case. Now, students continue to be on strike in Ranchi. As you know, there are several of them who have taken up a fast until death as per following what one of them, that is Devendra Singh Mahato, has in fact come out to do as well. Chief Minister Soren, meanwhile, reaches out to protesting students. The CID, meanwhile, on the parallel track of the probe that's currently underway on the entire examination fraud, irregularities in the JPSC examinations in Jharkhand, arrested five more people on Wednesday. So the total number of arrests now reaches 19. On that note, we have Ashutosh Mishra joining us on the broadcast with more details. Ashutosh, a very good morning to you. Very firstly, what more are you learning about A, the arrests, and B, how are the students there who are protesting against the irregularities of the exams reacting to the probe and these arrests? Are they satisfied at all?
1: Well, this is the 13th day of the protest, and despite of all the effort that the Soren government is doing, there is a dissatisfaction. The primary demand of the students to first cancel the JPSC and JSSC exam and at the same time hand over the probe to the CBI. They don't want to trust the state agencies as they believe there will be a pressure from the state government and probably that will not be a truthful to justice. However, in the meanwhile, the Soren government has invited the delegation of the students for conversation that we talk and by somehow they'll be able to resolve the deadlock. In the meanwhile, the CID, which is probing the case, has also cracked down. They have made several other arrests as well. So there is a clearly trust deficit that it is not a matter of year or 2 years since this has been happening over the years. That's perhaps one of the key reasons why this volcano, in the youth has erupted in Jharkhand. And hence, there is a lack of trust on the state agencies with regards to the investigation. So the primary concern and demand remain the same. And remember, this is, today is also first day of the monsoon session of Jharkhand Assembly. So where not only the opposition, which is the BJP, is planning to corner Hemant Soren government, but at the same time, a group of students, a faction of the students, protesting students, have also announced to march to the Assembly. So clearly the pressure is building up, pressure is mounting up on the government, and we'll have to see what further course of action they take.
0: Very true, Ashutosh. That's something we will keep a very close track of. But viewers, as Ashutosh just mentioned, it's day 13 of these protests that have now taken up and they have become the spotlight of Jharkhand's political landscape, the Jharkhand student protest. Ahead of the monsoon session of the Jharkhand Assembly, state government representatives visited the protest site and held talks with the protesting students. Chief Minister Hemant Soren has also invited a five-member delegation of protesters for talks. But student leader Devendranath Mahato has sought time, saying his indefinite hunger strike will continue until the students' demands are met. Now, the chief minister also briefed the governor, who termed the alleged recruitment irregularities a serious matter, while Soren assured students that justice would be done. Meanwhile, the BJP has, of course, stepped up their own attack on the Congress ever since they have been silent over the entire protest.
2: Alag-alag. सूचना माध्यमों से देख रहे हैं सुन भी रहे हैं उसकी विस्तृत रिपोर्ट और अनुसंधान की जो स्थिति है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से लेने की आवश्यकता है कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं कई लोग यहां जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है
0: So viewers, let's take you through what the entire recruitment row, the examination, JPSC recruitment examination, what is this row all about? It's the 14th JPSC examination that's now come under the spotlight. 103 posts, 2,204 shortlisted for the mains. No category-wise cut is seen in this examination or was published. Unsigned merit list is what in fact went ahead to trigger this row. There was a viral OMR as well. OMR is those sheets that you pen down your answers on. Then that presented the shortlisted candidate, and that's what in fact became the trigger point of this entire case. Attempted only 48 questions. Protesters questioned the 144 marks qualification. Now, Jharkhand comes out to order CID's SIT probe in this entire matter. The students have asked for a strict probe into the matter. And so has the government also on their part launched it. But that's not enough because the students have to say that this is not a one-off incident. They have been citing years of delays and irregularities and lack of transparency that comes with these examinations. And that is their biggest problem at this point that they have come out to flag. So what are the key demands of these students who are protesting for 13 long days? It might be a state-level examination, but it holds similar importance because at the end of the day, it has to do with their career, it has to do with their dreams and aspirations. The CBI and the ED, so their first demand, CBI and the ED probe into these recruitment scams, the ones that are recurring year after year. Cancellation of tainted examinations and results. If there is any sort of irregularity, you cancel the examination and retake it. Fresh, fair and transparent examination. That's a very basic right for any student that we speak. And yet they have to come out to demand this at a level where they have to come down to protest for the same. Time-bound recruitment calendar. It should not go on indefinitely or as long as the authorities want it to, but there should be a calendar in place for these examinations and the aftermath of it as to what happens after the results are out. Action on villains of paper leak. Strict action, which is something even at the central level we've seen there's a new amendment that's come in for the Public Examinations Act that already had been brought in 2024 where stricter provisions have been included, and that should be implemented in terms of actions against people who are involved in this paper leak nexus. Leak-proof exam and recruitment system, a transparent JPSC and JSSC recruitment. Very basic demands, unfortunately, one that they have to ask and seek from the government in the fashion that they have to, which is coming out to protest on the streets. On that note, let's take you through some exclusive conversations now. India Today's Preeti Chaudhary interacted with a student leader, Devendranath Mahato, who is on a hunger strike against the paper leak and other protesters. Till yesterday, he was in fact not even consuming water. But then he had a conversation with Sonam Bangchuk and post that, a conversation with us. Listen into what he said.
3: आपने आज सोनम वांगचुक की बात सुनकर अपना एटलीस्ट जो पानी का है वो फास्ट तोड़ा है आप जल्दी ही अपना अनशन भी तोड़िए क्योंकि हेल्थ इम्पोर्टेंट है आपके लिए पर आप कब तक इस अनशन पे बैठेंगे
4: मैं ये हंगर स्ट्राइक को तब तक कंटिन्यू रखूंगा जब तक हमारे सारे मांग सरकार नहीं मानती है मैं झारखंड का एक एक स्टूडेंट को संतुष्ट करूंगा सभी को संतुष्ट होंगे मांगों पर तभी मैं इस अनशन को तोड़ूंगा चाहे क्यों न ये सफेद चादर कफन में बदल जाए हमें मंजूर है लेकिन 26 सालों से बहुत परेशान है झारखंड के छात्र अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं
3: मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगी क्योंकि मैं आपको नहीं ज़्यादा बुलवाना चाहती अब सरकार ने बोला है कि वो बातचीत करेगी छात्रों को बोला है कि आप 5 मेंबर का एक गुट बनाइए हमसे बातचीत शुरू करिए क्या आप उससे खुश हैं वो जो 5 मेंबर जो भी वो चुने उससे खुश नहीं है
4: इस तरह का कमेटी का गठन होना जांच होना कार्रवाई होना ये 26 सालों से चलती आ रही है हमने अपना मांग पत्र सरकार को भेज दिया है वो सारे मांग कबूल करेंगे वो सारे मांग पूरी करेंगे तभी मैं मानूंगा।
3: तभी आप मानेंगे। आपका मंच और वो मंच एक है?
4: जी दोनों मंच एक है। ये जो आज इतना बड़ा आंदोलन देख रहे हैं झारखंड के स्टूडेंट्स का, ये शुरुआत 2 जुलाई 14th जेपीएससी सिविल सेवा पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के साथ हुई, और इसका लड़ाई मैं 5 जुलाई से कर रहा हूँ। 25 जुलाई से दिवा रात्रि सत्याग्रह किया हूँ। जब मैं थक चुका था, सरकार नहीं मान रही थी, थका हुआ अवस्था में 2 अगस्त को अपना अन्न और जल का त्याग किया था।
3: सरकार से किसी ने आपसे बात अभी शुरू की है, आपसे बात की है? क्योंकि सोनम मांगचुक का फोन आया आपको, हेमंत सोरेन सरकार से किसी ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की है?
4: जी मांग पत्र क्या है सब मानेंगे आप, भूख हड़ताल तोड़ दीजिए, इस तरह का हमें मनाने का प्रयास कल से किया जा रहा है।
5: हम आयोग को बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह का बहाली लाते हैं, फिर रद्द करते हैं, फिर लाते हैं, फिर रद्द करते हैं, तो स्टूडेंट से आप एग्जामिनेशन फी वसूलने के लिए आ रहे हैं, और विज्ञापन अगर निकाल रहे तो आप नशा में निकाल रहे हैं।
6: सबसे बड़ी बात यह है ना कि इससे पिछले वाली जो सरकार थी उसमें 6-7 बहाली था, जैसे स्पेशल ब्रांच, एक्साइज कॉन्स्टेबल, सारा एग्जाम को जब ये माननीय मुख्यमंत्री जीत करके आए थे तो सारा एग्जाम को जो है कैंसिल कर दिए थे, एग्जाम दिया हुआ था हम लोग का, दोबारा कैंसिल कर दिए थे। सीजीएल में तो कहीं इतना भ्रष्टाचार है, उनको कोई
3: कहां से आए हैं आप?
6: हम तो पलामू से हैं, पलामू।
3: इतना दूर यहाँ आए हैं?
6: हाँ।
3: इसी चीज के लिए
6: स्टूडेंट है ना?
3: आप स्टूडेंट हैं और इसी चीज के लिए?
6: हाँ, इसी चीज के लिए आए हुए
3: और डटे रहेंगे। अगर सरकार कहती है कि देखिए हम बाकी मांगे मान लेते हैं, पर सीबीआई की नहीं सीआईडी की जांच होने
6: चाहिए, मैं
3: सीबीआई ही चाहिए,
6: सीबीआई चाहिए। चूंकि कारण क्या है कि सीआईडी का दुहाई दे रहे हैं सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, सीआईडी मानी है कि सीजीएल पेपर जो लीक हुआ था उसमें 135 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन का आंसर मिला था, लेकिन उस टीम को बदल दिया जाता है मैडम, उसके बाद नया टीम में जो है सो आता है, वो जो है सो लिपापोती करता है और हाई कोर्ट में सबमिट कर देता है कि नहीं फ्यू क्वेश्चन जो है सो लीक हुआ है, जिसके वजह से हम लोग के पक्ष में न्याय नहीं हो पाया है मैडम।
7: फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो मेन्स की कॉपियां हैं एक प्राइवेट एजेंसी के प्राइवेट रूम में होटल में पाई गई, उनके कंप्यूटर में पाई गई, तो ऐसा कहां रूल है? मेन्स की कॉपियां जब भी स्टूडेंट मेन्स लिखते हैं उसको मेन्स लिखने के बाद कॉपियां जो है वो स्ट्रांग रूम में सबमिट हो जाती है, आयोग की जेपीएससी के स्ट्रांग रूम में सबमिट हो जाती है, बट एफआरओ मेन्स की आंसर राइटिंग की कॉपियां जो है जो मेन्स के एग्जाम में लिखी गई थी एक प्राइवेट एजेंसी के निजी कंप्यूटर लैपटॉप पे वो कॉपियां पाई गई, तो कैसे हुआ ये सिस्टम में ऐसा लूप होल है कि ऐसा सुनने में आता है, लोग एक बच्चा बोलेगा कि यहाँ की मेंस जो है स्टूडेंट तो हॉल में लिखते हैं ना, और जो सेटर लोग हैं वो होटल में बैठकर मेंस की कॉपियां लिखते हैं और सिलेक्ट होते हैं मैम।
0: Meanwhile, India Today's Rajdeep Sardesai interacted with activist Sonam Wangchuk over the Jharkhand student protest. Listen in to what he had to say.
8: Do you get a sense now that what started in Jantar Mantar is becoming nationwide, that there is this pent-up anger that is boiling over in different parts of the country? And are you becoming some kind of a mascot for them because the students contacted you and have said they will break their fast once you land in Ranchi?
9: That I do not intend to become anything like that. I just want everybody to be their heroes in their own lives, in their own places. And I see it as that. Nationwide, yes, I think it's good for everyone, for the government, the ruling party, that people raise their voice, because that's what keeps them on track and do better and better. A silent population is the worst thing that a governance system could get. So I'm happy that people are raising their voice. And yes, there in Jharkhand, the student was sitting on fast, which is very good, but without water and salt. This is not about suicide. This is about inflicting pain on yourself till the rulers understand that they have committed mistakes. So therefore I urged him to take water and salt, and some people say it's broken fast. No, it's just that he's on fast with water and salt, like Mahatma Gandhi did,
8: But are you planning to go to Ranchi? I mean, are you planning to go to different places to reach out to students? Is this something you made another mission in a way, that wherever students feel that they've been betrayed by the examination system or by the education system, Sonam Wangchuk will come there to show solidarity with students?
9: Well, it will depend on the gravity of the situation and the how just the cause is. But generally, yes, education and environment are two subjects very close to my heart and very important for any nation. So therefore, I would like to support any places that are raising a just voice for these two subjects.
0: On that note, viewers, we have breaking news coming in. The Congress's big charge now that Rahul event permission was cancelled. Congress says no nod for Prayagraj event on flimsy grounds. No permission for the Chhatro Ki Goonj event that was to take place in Prayagraj. Now the government is scared of Rahul and students. That is what the Congress has come out to allege. Rahul Gandhi will be addressing students in Prayagraj. Venue provider revokes permission for Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj event. The Kaistha Pathshala Trust is the one that's revoked this permission from the leader of the opposition of the lower house of our parliament. Now, on that note, let's first listen in to what the Congress members have had to say on the matter before we proceed with more details and a discussion on the same.
10: भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए. इसके पहले भी राजस्थान कोटा में कार्यक्रम निरस्त कराया था. बच्चों छात्रों के आवाज के चलते फिर उनको परमिशन देना पड़ा. इसी प्रकार उत्तराखंड के देहरादून में भी परमिशन देकर कैंसिल किया, जो छात्रों के दबाव के कारण फिर इनको देना पड़ा. इसी प्रकार इनको प्रयागराज में भी बच्चों की आवाज को दबा नहीं पाएंगे. आप जैसा जानते हैं कि हमारे नेता राहुल जी बच्चों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनके भविष्य की बात कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं, और उसमें ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है. न उसमें कहीं कांग्रेस का झंडा लग रहा है, न कहीं नारेबाजी हो रही है, सीधे बच्चों से संवाद कर रहे हैं.
0: On that note, Ashish Srivastav joining us on the broadcast with more details on the same. Ashish, a very good morning to you. Kya wajah di gayi hai ye jo Pathshala Trust hai, Kaist Pathshala Trust, unse ye aakhri moment pe cancellation jo inhone kiya hai, permission revoke kar liya hai inke chhatro ki goonj event se. Kya wajah diya hai logon ne?
11: Bilkul dekhiye, jis tarike se bada program aayojit tha aur usme sabse badi baat hai ki lakhon ki तादाद में वहाँ पर छात्र इकट्ठा होने थे. हालांकि इसको वजह के रूप में बताया गया कि ये पॉलिटिकली एक प्रोग्राम है जिसमें कांग्रेस के कई नेता, कई बड़े वरिष्ठ नेता यहाँ तक लखनऊ से पहुँचने वाले थे. इसको पीटा गया तो इतने बड़ी तादाद में एक कांग्रेस का पॉलिटिसाइज होना, ये कहीं ना कहीं एक इसकी वजह भी बना है. लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये माना जा रहा है कि ये युवाओं का ही एक प्रोग्राम था जिसमें सभी युवा ही मौजूद थे. यानी कि राहुल गांधी अगर किसी से मिलेंगे तो युवा थे, और जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो भी युवा थे, और जो लिस्ट वहां पर आएगी उनकी युवाओं की. तो ऐसे में ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है. इसके बावजूद सरकार इस प्रोग्राम को रोकना चाहती, जबकि इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए वहां पर पूरी तरीके से कांग्रेस के नेता पहुंच गए थे. कांग्रेस की विधानसभा सत्र अभी चल रहा था, और सत्र के बाद जो भी कांग्रेस के विधायक हैं या कांग्रेस के यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी वहां पर पहुंच रहे थे. तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि एक बड़ा प्रोग्राम जो पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, जिसमें संवाद होगा, जिसमें एड्रेस रैली होगी, तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को लेकर काफी ज्यादा प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रखा हुआ था, और उसी को लेकर ये रिजेक्शन है. तो इस वजह से भी माना जा रहा है. अब चूंकि युवाओं का ये संवाद है, ऑलरेडी सबको सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज दिया जा चुका है, सारी जगह एक तरीके से इन्विटेशन दिया जा चुका है इनडायरेक्टली. तो वैसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको मान रही है कि सरकार इस, क्योंकि जैन जी का जैसे प्रदर्शन दिल्ली में हुआ वैसे ही प्रयागराज में अब ये इस तरीके से एक संवाद था, और इस संवाद के बाद मानना यही है कि कहीं इतना बड़ा प्रोग्राम, क्योंकि छात्रों की संख्या प्रयागराज में बहुत ज्यादा है, ज्यादातर इंस्टीट्यूशन वहां पर है, ज्यादातर कोचिंग वहां पर है, ज्यादातर स्टूडेंट्स वहां पर है, तो इस वजह से भी माना जा रहा है. तो अब ये क्या पॉलिटिकल आगे एंगल होगा इसका, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा. लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन इसको अनुमति देने से मना कर रहा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगी हुई है कि इसको किसी तरीके से प्रोग्राम किया जाए.
0: जी आशीष, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वेल व्यूअर्स, सो वेरी फ्लिम्सी ग्राउंड्स इज व्हाट द कांग्रेस हैज अलेज्ड ओवर व्हिच This particular authority has cancelled and revoked their permission for the very Chhatron Ki Goonj event in Prayagraj. On that note, we have more breaking news that's coming in. Let's quickly take a look. On that note, BJP now calls out Rahul Gandhi's hypocrisy. BJP hits out at Rahul for selective outrage. What have they said? Why not visit Jharkhand? Jharkhand students are in pain, but Rahul Gandhi seems to be ignoring it. It's BJP Samit Patra, in fact, specifically, who's come out to say this, that Rahul conveniently is suppressing the issue. Rahul meets students, backs Gen Z over abuses to Prime Minister, but ignores this. This is what Samit Patra has pointed out. Now, on that very note, we'll first take a look at what Samit Patra has said and then proceed on a discussion over the same.
12: झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं. झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए. मगर ये जो सिलेक्टिविटी है, जहां झारखंड के बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे राहुल गांधी कन्वीनियंटली दबा दे रहे हैं. वो झारखंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार वहां है.
0: Piyush Mishra joins us on the broadcast with more details on the same. Piyush, a very good morning to you. You know, this question has been out and out asked by the BJP time and again, that if it's an opposition state which sees paper leaks, then the same leaders are nowhere to be seen backing or amplifying the voices of the students who have, in fact, come out to voice the concerns. And this is what politics has now taken a turn toward when we speak of all of these protests taking place.
13: Well, that's right, Shreya. You know, remember that there are protests taking place not only in Jharkhand, but also in Punjab. We have seen the protests happening. And you would remember that because of the relentless protests at Jantar Mantar, Education Minister Hemant Pradhan has to resign. Now, what BJP is saying? BJP is saying that why there is selectivity? Why Rahul Gandhi is not going to Jharkhand? It is because of political compulsion he has there in the state. Remember that that Congress and JMM have their government in the state, and that's why BJP is targeting Rahul Gandhi. So far, Congress leaders have decided not to speak on this issue. In fact, we have been trying to seek answers from the Congress leaders. We have so far maintained complete silence on this, and that's what BJP is now raising. Like BJP is saying that why you are not going to Jharkhand, why there is selectivity. At the same time, BJP has also accused Rahul Gandhi of pushing false narrative by using instruments and their sentiments. BJP is saying that Rahul Gandhi is attempting to use instruments to advance a political narrative, and he is doing so that he can somewhere try to influence students in his favor. BJP is also saying here that it wants to expose the false narrative and the bunch of lies that Rahul Gandhi has been trying to propagate. We'll have to see how the Congress is going to react to this. At the same time, how the Congress party will look into the kind of protests those have intensified in the state of Jharkhand.
0: Very true. Politics clearly snowballing on this entire matter now. And viewers, let's give you more details on this. Piyush, thank you for filling us in on this very aspect. But let's tell you that it's not just restricted to one aspect when it comes to the politics that's, in fact, been snowballing on the student protest. That's not just been seen in the national capital or Jharkhand, but several other cities as well. Now, students continue to remain at the center of a bitter political showdown between the opposition and the government. The Lok Sabha leader of opposition, Rahul Gandhi, met some of the protesting students in the national capital as he launched a fresh attack on the Modi government over the alleged crackdown during July 20th protest. Now, praising the young protesters, calling them outspoken, young, fearless, Rahul Gandhi said, "Students showed courage by speaking up, something which the Prime Minister and the Home Minister lack." Pointing to the apology by a 15-year-old who abused Prime Minister Modi, Rahul Gandhi claimed protesters were threatened at their houses and asserted that they had nothing to apologize for. The BJP hit back strongly, accusing Rahul Gandhi of peddling a false narrative and misleading the country over protests. BJP MP Sambit Patra, meanwhile, is the one who came out to reject Rahul Gandhi's allegations, maintaining that no shots were fired during the July 20th march, and accusing the Congress leader of exploiting students for political gains and pushing a divisive agenda.
14: We had a freewheeling conversation with some of the young protesters. They mentioned to me how they were assaulted, beaten, threatened. I'm very proud of them. I'm very proud of what they have done, what thousands of young Indians like them have done. They have defended the Constitution. They have protected the idea of India. They have protected India's future. Complaining about the education system, which is a flawed system, a collapsing system, a useless system, is not a crime. If anything, the system needs to be changed. It needs to be corrected. And that is all they were asking for. They were not doing violence. They were not being aggressive. They were not being nasty. They were beaten. They were assaulted. They are threatened. Accepting their apology, forcing them first, sending gundas to their house. Mahilaon ke ghar mein gunda bhejne ke baad, forcibly unse apology, 15 saal ki bachchi se apology lena, aur phir us apology ko accept karna, accepting that apology is complete nonsense. We do not accept it. We want a education system that works. We want exam leaks to stop. And we want the future of this country, who is them, to be respected and protected.
15: We are going through a strange time in our country. Students are on the street in severe pain. They don't have work. They are asking for fairness in exams. They are asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do.
16: प्लेट गन मैं अपने आंखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया और मुझे पता अच्छी तरह से पता है मुझे गन से ही फायर में लगी है प्लेट गन से ही लगी हुई है बस मुझे ये पता है पर जब जब देश में जंतर मंतर 20 तारीख और जब जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले हम खड़ा होंगे जरूर
17: यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था प्लीज चेंज योर नैरेटिव चेंज योर पर्सपेक्टिव पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है ये क्राइम है और सिर्फ यही नहीं जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं मेरे बारे में गलत गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीस में अपनी बॉडी बेच रही हूँ सर आप खुद ही सोचिए उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी क्योंकि वो ये बोल रहे हैं 27th को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था आज 5 तारीख है मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं ना ये बेटियों को बचने दे रहे
0: Briefly shifting our focus to the political arena of Uttar Pradesh now. Ayodhya Grudge Game 2.0 is what we will take your attention to. Samajwadi Party now goes all out to woo Brahmins. Akhilesh names Pawan Pandey for Ayodhya. SP fields erstwhile giant slayer in Ayodhya is what we are learning. And this is Samajwadi Party's first candidate announcement for the Uttar Pradesh 2027 polls. Pawan Pandey to fight from the high-profile seat of Ayodhya, a seat that's in fact seen a lot of controversy in just the last few months itself, given all that's been happening both in the political sphere and beyond that. Akhilesh's poll bugle at the Brahmin conference could clearly be seen. Ex-MLA gets an early ticket for this key battle. And already we see the battle lines now being drawn for 2027. Now let's quickly listen in to what Akhilesh Yadav had to say while declaring the name and the candidacy of Pawan Pandey for Ayodhya.
18: Pawan Pandey ji, jo Ayodhya se is baar jeetne ja rahe hain. Pawan Pandey ji, jo Ayodhya se is baar jeetne ja rahe hain. Pawan Pandey ji, jo Ayodhya se is baar jeetne ja rahe hain. Pawan Pandey ji, jo Ayodhya se is baar jeetne ja rahe hain.
0: Ashish Srivastav joins us back on the broadcast. Ashish, ye jo kadam Samajwadi Party ne kaafi jaldi already le li hai, Pawan Pandey ka naam declare karke Ayodhya ke seat se. Pehli baat to, kuch dino pehle hum dekh rahe the ki kuch aise rumors aur speculations aa rahe the ki Brahmin Samaj ke beech aur Samajwadi Party ke beech mein thoda sa representation ko leke baatcheet ढंग से नहीं चल पा रही, पर उस चीज को दिमाग में रखते हुए और अयोध्या जैसे सीट से ऐसे एक कैंडिडेट को लेकर आना और ऑलरेडी डिक्लेयर कर देना उनका नाम, ये काफी बड़ा कदम है और एक मैसेज है उसी ब्राह्मण समाज को कि नहीं, हम आपके साथ है।
13: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये अनाउंसमेंट हुआ है वो ब्राह्मण जो सम्मेलन है वो किया जा रहा था, और अब समाजवादी पार्टी अभी तक पीडीए की बात करती रही है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की। अब पीडी का मतलब उसने पंडित या ब्राह्मण कर दिया है, तो एक मैसेज है क्योंकि अयोध्या के मुद्दे पर सरकार को अपोजिशन ही मानती है कि इससे अच्छा मुद्दा उसके पास नहीं है, और यही वजह है कि उन्होंने चंदा चोरी पर घेरा। अयोध्या में उनका सांसद है, अयोध्या से अब जब बारी है तो अयोध्या में, क्योंकि लोगों का मानना है समाजवादी पार्टी के मुताबिक कि अयोध्या ही हराएगी, इस तरीके से बात कह रहे हैं। तो ये पवन जो पांडे हैं वो अयोध्या के हैं, इन्होंने ही राम मंदिर के लिए पूरी इनिशिएटिव किया था जब ये चंदा चोरी वाली बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण पॉलिटिक्स के साथ ये नैरेटिव पूरा सेट कर दिया है कि जो ब्राह्मण बीजेपी से खिन्न है, भिन्न है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कल भी ब्राह्मण सम्मेलन में कहा कि कई ऐसे ब्राह्मण है जो बीजेपी में अगर वो बाटी चोखा की पार्टी करते हैं तो उनको नोटिस दे दिया जाता है। तो ऐसे में आखिर ब्राह्मण क्या करे, तो समाजवादी पार्टी ने एक विंडो खोली है ब्राह्मणों के लिए और ये मैसेज दिया है कि हम पीडीए के साथ साथ ब्राह्मणों के साथ खड़े हुए हैं। और उन जितने भी ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, एक बात और नोटिस करिए कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो कई आरोप लगते रहे यहाँ पर कि ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में एक गैप बना हुआ है, और उसी गैप को कैश कराने की कोशिश समाजवादी पार्टी की है। यही वजह है कि उन्होंने अयोध्या से सबसे पहला अपना कैंडिडेट ब्राह्मण के रूप में फिक्स किया है, और उसकी यही जिम्मेदारी दी है कि अयोध्या जीत कर आएंगे। यानी कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया है कि हम अयोध्या के साथ खड़े हैं, हम सनातन के साथ खड़े हैं, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व का पहले तो एक टैग लगता रहा, लेकिन अब जब से उन्होंने मंदिर का मुद्दा उठाया है वो साथ साथ कहते आए हैं कि हम सनातनी हैं, हम ब्राह्मणों के साथ हैं, और यही वजह है कि आज अयोध्या का कैंडिडेट डिक्लेयर करके 2027 के चुनाव का ये बिगुल समाजवादी पार्टी ने फूका है। ये बहुत नए तरीके की पॉलिटिक्स अब यूपी में शुरू कर दी है जहां पर ब्राह्मणों को पीडीए के साथ खड़ा कर दिया है। तो चैलेंज बीजेपी के लिए है कि जिस तरीके से वो पीडीए को लेकर अटैकिंग थी, अब ब्राह्मणों को लेकर भी होगी। तो समाजवादी पार्टी ने ये मैसेज क्लियर किया है और ये भी कहा है कि आने वाले समय में जो ब्राह्मण है, चाहे उनके पार्टी में, चाहे वो सनातन पांडे से लेकर माता प्रसाद पांडे, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, आने वाले समय में भी ऐसे ही टिकटों की जब बंटवारा होगा तो उनको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। ये भी एक मैसेज है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण को लेकर ये उत्तर प्रदेश में बड़ी पॉलिटिक्स है, जो अपोजिशन
0: बड़ी पॉलिटिक्स, बड़ा मैसेज और डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजी जो उनके लिए, जिसके ऊपर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ताकि ऑलरेडी पिच सेट हो जाए 2027 के इलेक्शंस के लिए। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। व्यूअर्स, वी हैव सम मोर न्यूज दैट्स कमिंग इन, लेट्स क्विकली टेक अ लुक। What we're now learning about is the Ayodhya star icon slamming temple Chanda Chori. It's religious leader Sadhvi Ritambara on Wednesday who said the alleged theft of donations and offerings at the Ram temple in Ayodhya was extremely unfortunate and the culprit should be punished quickly. The revelations about the theft hurt the devotees as lives have been sacrificed to construct the temple, said Ritambara, one of the leaders of the movement for the construction of the temple. Now, asked by reporters here about the controversy, she said, "This is a very unfortunate incident that's shamed us all. You know that even in a large society, there are at least 50 to 100 people who bring shame to the nation, society, clan and tradition. And this has been one such incident." Now, before I take you through all of what she said, listen in for yourself as to what all has been said by her while speaking of the Ram Mandir Chanda Chori case.
19: या वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसने हम सबको शर्मसार किया और आप जानते हो कि बहुत बड़े समाज में भी 5-10-50-100 लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्र को भी समाज को भी कुल को भी परंपरा को भी लज्जित कर देते हैं वो ऐसी ही घटना रही जिसने मतलब मैं तो कहती हूँ ऐसी भी गिद्ध दृष्टि होती है कि श्रद्धा से चढ़े हुए धन के प्रति गिद्ध दृष्टि रखना भारी दुर्भाग्य है दंडनियों को जल्दी दंड मिले
0: And more news coming in from Uttar Pradesh. We do see this is with regards to the UP Madrasa Bill. Yogi government scrapping the SP era bill, that is the Madrasa Salary Bill. Now, Samajwadi Party era Madrasa Pay Bill formally withdrawn. The bill proposed a regular salary for the Madrasa staff. The bill made Madrasa salary delay criminal. Earlier, Governor flagged concerns and stalled the bill. The centre backed objections to the bill and the Yogi government has now gone ahead to proceed and formally axe and kill the SP Madrasa bill. It was introduced back when the Samajwadi Party was in power in Uttar Pradesh and the Yogi government has withdrawn that very Madrasa salary bill. Let's get into the details of what exactly the bill about, what was the bill all about. Ashish Srivastav continues to be with us. Ashish, pehle to aap is bill ke baare mein thodi jankari dijiye ki is bill ke andar kya exactly provisions the jo madrasa ke staff the aur unke salaries ko leke aur yogi government ne kafi saalon se ye ladai hoti aa rahi hai aur abhi ye jo yogi government ne scrap kar diya hai kis ground pe scrap kiya hai isko uske baare mein bhi bataiye.
20: देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो ये मदरसा बिल वापस किया गया है इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब शिक्षकों को वेतन भुगतान से जुड़ा एक पूरा ये एक सेक्शन था जिसमें ये कहा गया है कि सपा सरकार मदरसा शिक्षकों कर्मचारियों के लिए 2016 में एक ऐसा विधेयक पास कराया था जिसमें बेसिक व माध्यमिक शिक्षकों की तर्ज पर ही था. विधेयक में कुछ ऐसे प्रोविजन थे जिसमें मदरसा शिक्षकों को वह कर्मचारियों को वेतन समय पर ना मिलने पर एक संबंधित अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा तक दर्ज करने की बात कही थी और ये था कि मदरसों में किसी भी शिक्षक व कर्मचारी के खिलाफ ना तो कोई जांच हो सकती थी ना ही प्रक्रिया कार्रवाई हो सकती थी. और इसके कुछ बिंदु को जो तत्कालीन राज्यपाल थे राम नाईक वो संतुष्ट नहीं थे और इसी पर आपत्ति जताते हुए ये विधेयक राष्ट्रपति के पास भी भेज दिया गया था. इसी कारण कई इलाके स्वीकृति नहीं मिल सकी थी. करीब 10 वर्ष से लंबे इस प्रोविजन के बाद योगी सरकार ने इन दोनों सदनों से वापस लेकर औपचारिक रूप से इसका अध्याय समाप्त कर दिया है. सरकार के यह माना जा रहा है कि उन जो लंबे लंबे विधेयक पड़े हुए थे उनको समाप्त करने की प्रक्रिया भी है और इस विधेयक में सबसे बड़ा यह था कि बेसिक शिक्षा के तर्ज पर ही उनको सैलरी सिस्टम्स और सारी चीजों को दी जाएंगी. दूसरा अगर कोई सवाल भी करता है अध्यापक या अन्य कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के संबंधित में तो उनके मतलब खिलाफ न ही मुकदमा इस तरीके से और वेतन न मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा तक दर्ज करने की बात कही थी. तो एक बड़ा विधेयक ये था समाजवादी पार्टी सरकार का जिसमें साफ तौर से इतनी पावर दी गई थी मदरसा शिक्षकों को और मदरसे को पढ़ाने के लिए जिसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों को तक मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी और इस विधेयक को लेकर काफी विवाद हुआ था. उसी विधेयक को अब योगी सरकार ने खत्म कर दिया है. अब उसमें किसी प्रकार का ना ही पेंडेंसी होगी ना ही किसी प्रकार का दर्ज किया जा सकेगा.
0: जी आशीष, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद. वेल, गिव अस So you get the context of the entire bill, how it was brought in by the Samajwadi Party, and now the Yogi government has come out to scrap it in Uttar Pradesh, is what we are bringing to you. On that note, let's quickly take you down south next. Karnataka ministers Hindu Rashtra jibe star a row. Yatindra targets Hindu Rashtra idea, says Hindu Rashtra will bring oppression, calls for fight against communal forces, claims religion is being used as a tool of suppression. Not the first time we see such comments, however, coming in from political leaders of this very state. But listen in to what he had to say first.
1: ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದರೆ ಅದು ಶೋಷಣೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪೂಮವಾದಿಗಳು, ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಾವರ್ತವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
0: Let's now take you across to a certain OTT platform that we're all aware of and are perhaps quite on all the time. But there is news coming in with regards to that very OTT platform. You're speaking of Netflix. Now, Netflix company CEO Ted Sarandos met Prime Minister Narendra Modi to discuss the growing global influence of Indian storytelling and the company's long-term commitment to India's creative economy on August 5. The meeting came alongside the launch of the Netflix India Storytelling Initiative. That's a multi-phase investment that's aimed at strengthening India's creative talent pipeline. The company said the initiative would be creating strategic partnerships with Indian institutions and equip the next generation of storytellers with industry-relevant skills. Now, these would be including animation, visual effects, gaming, comics, ecosystem, which it described as a key driver of India's orange economy. One, a word, if you remember, was used quite predominantly by the finance minister of the country while she laid down the budget this time. Now, it said the effort would also support the government of India's Viksit Bharat at 2047 ambitions through stronger education, industry partnerships and creator capability development. Well, that is the news and report with regards to the Prime Minister's meeting with Netflix. Let's take you to another big story where another big tech company that has been facing a particular conflict with the center. Well, after facing intense scrutiny over content moderation issues, it's Meta CEO Mark Zuckerberg that's issued an apology now. Zuckerberg apologized over concerns related to child sexual abuse material, deepfake content and operational errors on the platform. Meta, in fact, went ahead and also came out to acknowledge concerns around paid promotions, boosting of certain categories of content and accepted lapses in handling content on its platform. Not just that, Meta's global head of public policy, Joel Kaplan, who met the METY officials and the IT minister on Wednesday, also apologized to the government on behalf of Meta. Now, over the restriction of Prime Minister's Facebook video, this was one of the central points of discussion between the two sides. The discussion, however, was not over just restricting itself to this. Meta's global team is, in fact, set to meet the government officials again today for the second round of talks. Remember, it's the three rounds that so far been planned into this entire episode of events that's come about. Further discussions expected on content moderation and platform accountability, especially when children are concerned.
21: जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हों, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के जो उस वीडियो एथी को जो हटाया था और उस पर जो हमारे सचिवालय ने, लोकसभा सचिवालय ने भी उसको लिखा था ऑलरेडी, तो उन्होंने माफी मांग लिया है, लेकिन हमें लगता है कि उसकी माफी जो है देश से उन्होंने मांगा है, लेकिन वो मिला है कि उस साजिश के तहत कहीं ना कहीं किया था। साजिश का भी पर्दाफाश होना चाहिए कि किस साजिश के तहत उन्होंने हटाया।
0: Shifting our focus now to the international arena, Washington Post has come up to say that Trump confronts Pete Hegseth over U.S. missile shortages and Camp David meeting turns out to, in fact, be quite tense. Missile depletion forces Trump to call off the massive strike on Iran. That is the report. Remember, when we were taking you through the headlines earlier, we told you about how Donald Trump had come up to say that there will be no strikes for now against Iran because there's a certain phone call that's coming from Iran's side and that they want a deal, which is why they are halting on one of the biggest strikes that they had planned since World War II against Iran. But now Washington Post's report is starkly different. And the picture it's painted is that there is a missile shortage which has in fact made the situation quite tense within Trump administration, with Trump himself pulling up Pete Hegseth, who's the Secretary of War, the Department of War in the United States right now. U.S. is running dangerously low on Patriot, Thaad, Tomahawk and ATACMs missiles at this given point. And it's Hegseth who's been accused of failing to warn Trump about critical weapons stockpile crisis. Remember, Pentagon sought $67 billion to rebuild the arsenal as Iran war drains U.S. firepower. And this is already in addition to the three-digit billion number that we had presented to you earlier. Billions of amounts that has already been spent by the Trump administration on this war. Now, the White House rejects a report of Trump-Hegseth clash, of course, and calls it 100% fake news. U.S. missile crunch spreads beyond Iran, and Ukraine air defense replenishment also seems to have been hit. So it's not just their own stockpile at this given point, but there is a shortage of ammunition that we're seeing that's also going on and spilling over to other war fronts that Donald Trump and U.S. in general has been involved, or at least has been providing support with. Meanwhile, let's take you to what Trump has come out to say. It's his big remark on a peace deal. He says, plan big attack, but Iran pleaded. Plan the biggest attack since World War II, Iran pleaded, decided on a peace deal. And that is why we have put a halt on that attack. We're knocking them. I would rather make a deal because I do not want to kill people. We were set for the biggest attack of this particular era since World War II. They called me and said, please don't do it. Let us talk. Let's listen into that entire account that's been given of their phone call by the President of the United States.
2: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point, we were set for the biggest attack of any attack, and we

0: monsoon, Nagpur's chitar Oli becomes alive with the sound of chisels and the promise of Bappa's arrival. But the festive season, the biggest talking points now, the rising cost of devotion. Third generation idol makers say prices have gone up by nearly 30%.
1: जिससे 25% मूर्ति जो रेट बढ़े हैं, लेकिन हम मट्टी के कलाकार होने के कारण हम उतना तो नहीं ले रहे, हम थोड़ा सा हम भी नुकसान सहन करने के लिए तैयार है। 15% से आसपास हम महंगी मूर्तियां हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग जो है अभी तो सब रॉ मटेरियल महंगा हो गया है।
0: Yet workshops continue to innovate with fresh themes and customized Ganpati idols drawing buyers.
2: महंगाई की मार तो है, कलर वलर सब थोड़े महंगे हो गए हैं, लकड़ी उकड़ी मट्टी उट्टी सब महंगे हो गए। थोड़ा क्या हम लोग 100-200 रुपए ज्यादा मांग लेते छोटे मूर्ति में, कस्टमर दे देते पैसे।
0: Despite the higher price tag, devotion remains untouched. Families have begun booking their bappa.
3: जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रेफर करते हैं।
4: पिछले 10-12 सालों से यही से मूर्ति लेता हूँ, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनती है। और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियाँ बुक हो जाती है।
0: हायर कॉस्ट मे हैव रीशेप्ड द मार्केट बट नॉट द फेथ। With Yogesh Pandey, Bureau Report, India Today.

0: monsoon, Nagpur's chitar Oli becomes alive with the sound of chisels and the promise of Bappa's arrival. But the festive season, the biggest talking points now, the rising cost of devotion. Third generation idol makers say prices have gone up by nearly 30%.
1: जिससे 25% मूर्ति जो रेट बढ़े हैं, लेकिन हम मट्टी के कलाकार होने के कारण हम उतना तो नहीं ले रहे, हम थोड़ा सा हम भी नुकसान सहन करने के लिए तैयार है। 15% से आसपास हम महंगी मूर्तियां हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग जो है अभी तो सब रॉ मटेरियल महंगा हो गया है।
0: Yet workshops continue to innovate.

0: with fresh themes and customized Ganpati idols drawing by us.
1: महंगाई की मार तो है, कलर वलर सब थोड़े महंगे हो गए हैं, लकड़ी उकड़ी मट्टी उट्टी सब महंगे हो गए। थोड़ा क्या हम लोग 100-200 रुपए ज्यादा मांग लेते छोटे मूर्ति में, कस्टमर दे देते पैसे।
0: Despite the higher price tag, devotion remains untouched. Families have begun booking their bappa.
2: जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रेफर करते हैं।
3: पिछले 10-12 सालों से यही से मूर्ति लेता हूँ, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनती है। और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियाँ बुक हो जाती है।
0: हायर कॉस्ट मे हैव रीशेप्ड द मार्केट बट नॉट द फेथ। विद योगेश पांडे, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे।

0: But the festive season, the biggest talking points now, the rising cost of devotion. Third generation idol makers say prices have gone up by nearly 30%.
1: जिससे 25% होती जो रेट बढ़े हैं, लेकिन हम मिट्टी के कलाकार होने के कारण हम उतना तो नहीं ले रहे, हम थोड़ा सा हम भी नुकसान सहन करने के लिए तैयार है। 15% से आसपास हम महंगी मूर्तियां हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग जो है अभी तो सब रॉ मटेरियल महंगा हो गया है।
0: Yet workshops continue to innovate with fresh themes and customized Ganpati idols drawing buyers.
2: महंगाई की मार तो है, कलर वलर सब थोड़े महंगे हो गए हैं, लकड़ी उकड़ी मट्टी उट्टी सब महंगे हो गए। थोड़ा क्या हम लोग 100-200 रुपए ज्यादा मांग लेते छोटे मूर्ति में, कस्टमर दे देते पैसे।
0: Despite the higher price tag, devotion remains untouched. Families have begun booking their bappa.
3: जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रेफर करते हैं।
4: पिछले 10-12 सालों से यही से मूर्ति लेता हूँ, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनती है। और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियाँ बुक हो जाती है।
0: हायर कॉस्ट मे हैव रीशेप्ड द मार्केट बट नॉट द फेथ। With Yogesh Pandey, Bureau Report, India Today.
5: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: every monsoon, Nagpur's chitar Oli becomes alive with the sound of chisels and the promise of Bappa's arrival. But the festive season, the biggest talking points now, the rising cost of devotion. Third generation idol makers say prices have gone up by nearly 30%.
1: जिससे 25% मूर्ति जो रेट बढ़े हैं, लेकिन हम मट्टी के कलाकार होने के कारण हम उतना तो नहीं ले रहे, हम थोड़ा सा हम भी नुकसान सहन करने के लिए तैयार है। 15% से आसपास हम महंगी मूर्तियां हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग जो है अभी तो सब रॉ मटेरियल महंगा हो गया है।
0: Yet workshops continue to innovate with fresh themes and customized Ganpati idols drawing buyers.
2: महंगाई की मार तो है, कलर वलर सब थोड़े महंगे हो गए हैं, लकड़ी उकड़ी मट्टी उट्टी सब महंगे हो गए, थोड़ा क्या हम लोग 100-200 रुपए ज्यादा मांग लेते छोटे मूर्ति में, कस्टमर दे देते पैसे।
0: Despite the higher price tag, devotion remains untouched. Families have begun booking their bappa.
3: जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रेफर करते हैं।
4: पिछले 10-12 सालों से यही से मूर्ति लेता हूँ, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनती है, और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियाँ बुक हो जाती है।
0: हायर कॉस्ट मे हैव रीशेप्ड द मार्केट बट नॉट द फेथ. With Yogesh Pandey, Bureau Report, India Today.

0: listen in to what Tarun Tejpal has said.
1: हमको कोई डाउट नहीं है, हम 13 साल से एक पॉलिटिकल वेंडेटा के पीछे, तहलका के काम की वजह से पीछे, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने इस ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल पूरा केस लड़के हम लोग अक्विट हुए। अभी ये लोग फिर पीछे पड़ गए हैं। जो इनके साथ लोग हैं उनको तो ये सब अक्विट कर देते हैं। जिन्होंने इनके अगेंस्ट कभी भी पत्रकारिता की हो या कुछ भी कहा हो, ये उनके पीछे पड़े रहते हैं। ये बात सही है, तहलका ने पत्रकारिता की और कुछ ऐसी पत्रकारिता भी की जिससे वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कोई नुकसान होगा। अब उसके पीछे ये लोग बदला ले गए भाव से, 13 साल से हमारे पीछे पड़े हैं। इन्होंने मेरी पत्रकारिता बंद करा दी, इन्होंने तहलका बंद करा दिया, इन्होंने मेरी किताबों का छपना बंद करा दिया। लेकिन हम लड़ेंगे, हम मेरे को पूरा फेथ है कि इतनी बड़ी जुडिशरी में ऐसे जज हैं जो सच देखेंगे और सच एकदम से सामने आएगा।
0: Remember, 2 weeks' time that has been given to Tarun Tejpal to surrender this as his counsel has already approached the top court seeking a cancellation or a stay on the Bombay High Court order. We'll continue to get you the latest. For the moment, a short commercial break. My colleague Anisha Mathur joins you on the other side. Do stay tuned for India Today.

0: जितना सीट बिक्री होता है उतना सीट पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करते हैं। पूरी तरह से विक्रेता मुख्यमंत्री बनी हेमंत सोरेन जी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करते हैं। पूरी तरह से विक्रेता मुख्यमंत्री बन गए।
1: कपड़े की दुकान में काम कर रहा हूँ।
2: मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है मैडम। कॉलेज में मैं टॉपर रहता था।
3: शिव सोरेन जी की दिवंगत आत्मा अपने पुत्र से कह रही है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा।
0: कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी प्रधानमंत्री के आवास घेरने पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ झारखंड में हालचाल भी पूछने नहीं आ रहे हैं।

0: are watching India Today.
1: Asmita Day, a Gen Z, so to say, has created history, bringing India the first gold medal when it comes to judo sport at the Commonwealth Games in Glasgow. I caught up with her at the academy where she had trained recently, how she's inspiring the next generation. But it's not just about her victory. It's also about her extraordinary story of resilience, how she managed to overcome tragedies in her life, restrictions of any kind, and bring this glory to India. So don't just look at the achievements. Also remember the hardship and struggle behind it. Here's a special report.
2: All of 23 years old and creating history for India. Asmita Day won the first gold medal in judo in Commonwealth Games 2026 in Glasgow, defeating Canada's Heidi Quach in the women's 48-kilogram final. Back in Delhi, Asmita is now inspiring the next generation and also reminiscing about her victory. Techniques सबकी same होती है.
3: जी.
2: तो ऐसा क्या हुआ कि एक 23 साल की इंडिया की लड़की ने जीत हासिल करी? क्या वो mental confidence था या कोई trick थी जिसमें आप successful हुए?
3: जी मैम, वो mental का वो था और mindset था मेरा कि मुझे मारना ही है, तो शायद उसी वजह से मैं जीती हूँ. मतलब जीतना ही है, हराना ही है करके.
2: But right before the historic win came Asmita's biggest tragedy. She lost her father, her main supporter, to a brain stroke.
3: मेरे पिताजी जो थे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते थे मुझे. मैं कई बार बहुत हार जाती थी इंडिया में और मेरे पिताजी फिर भी बोलते थे तुम एक दिन चैंपियन बनोगे, चिंता मत करो, तुम कर बस लगे रहो. और मैं वही करती थी, हमेशा लगे रहती थी. पिताजी कितना खुश होते क्योंकि जब मैं सीनियर नेशनल में भी गोल्ड लिया था तो वो बहुत खुश थे.
2: इमोशनल मैं मुझे पता है, ये ऐसा टाइम होता है कि गॉड ब्लेस यू, और वो जहाँ भी होंगे वो कह रहे होंगे कि देखो मेरी बेटी ने
3: कर दिखाया.
4: हमने डिस्कस किया कि बेटा जो पैदा भी नहीं है उसको भी जाना है. अब आपके फादर जा चुके हैं, व्हाट नेक्स्ट? आपके फादर का सपना तो जिंदा है, ही इज वॉचिंग यू. तो जिस दिन उनकी 13वीं हुई थी, सेम डे ये वापस आई थी, और जो फर्स्ट फ्लाइट टिकट मिली हमें, क्योंकि मुझे पता था इंडिया में दोस्तों से मिलेगी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगी, इमीडिएटली इसको यूरोप भेज दिया था. और इसने बहुत हिम्मत दिखाई मैम. शी वॉज द लाइटेस्ट एंड सबसे यंग लड़की थी मेरी अकेडमी में जब मैं 2018 में साई ज्वाइन किया था. इसके अंदर वो मैडम विल पावर थी.
2: वॉचिंग अस्मिता डेज विक्ट्री टुडे, the next generation is already gearing up.
5: जब वो जीती तो लगा था भारत को रिप्रेजेंट कर रहे, तो भारत पहली बार जूडो में जीता, बहुत अच्छा लगा.
6: I was feeling very good that she represented our Bharat.
2: Bharat, very good. That is what inspiring figures do.

0: Every monsoon, Nagpur's Chitar Oli becomes alive with the sound of chisels and the promise of Bappa's arrival. But the festive season, the biggest talking points now, the rising cost of devotion. Third generation idol makers say prices have gone up by nearly 30%.
1: जिससे 25% मूर्ति जो रेट बढ़े हैं, लेकिन हम मट्टी के कलाकार होने के कारण हम उतना तो नहीं ले रहे, हम थोड़ा सा हम भी नुकसान सहन करने के लिए तैयार है। 15% से आसपास हम महंगी मूर्तियां हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग जो है अभी तो सब रॉ मटेरियल महंगा हो गया है।
0: Yet workshops continue to innovate with fresh themes and customized Ganpati idols drawing buyers.
2: महंगाई की मार तो है, कलर वलर सब थोड़े महंगे हो गए हैं, लकड़ी उकड़ी मट्टी उट्टी सब महंगे हो गई। थोड़ा क्या हम लोग 100-200 रुपए ज्यादा मांग लेते छोटे मूर्ति में, कस्टमर दे देते पैसे।
0: Despite the higher price tag, devotion remains untouched. Families have begun booking their bappa.
3: जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रेफर करते हैं।
4: पिछले 10-12 सालों से यहीं से मूर्ति लेता हूं, बहुत सुंदर मूर्तियां बनती है, और आप 1-1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियां बुक हो जाती है।
0: हायर कॉस्ट मे हैव रीशेप्ड द मार्केट बट नॉट द फेथ। With Yogesh Pandey, Bureau Report, India Today.

0: झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो जी एसएससी डीजीटी हो, एक्साइज कांस्टेबल का हो, या फिर जितना भी एग्जामिनेशन है, सब में करप्शन का केसेस आते हैं। तो उससे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट किए हैं। ये तो अभी हाईलाइट में, नेशनल मीडिया में अभी हाईलाइट में आया, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कई प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे फोर्सफुली लाठीचार्ज के थ्रू या किसी और अदर फोर्सफुली उन्हें दबा दिया गया। अब क्या हुआ ना कि अभी आप जो यहाँ पे प्रोटेस्ट देख रहे हैं वो सिर्फ किसी एक एग्जाम को लेकर नहीं है, जितने एग्जाम्स में करप्शन हुए हैं
1: सभी के लिए आए,
0: सभी के लिए। मैं अब
1: तो आप क्यों आए?
0: इसलिए कि जितने बार भी जेपीएससी होता है, टाइम पे नहीं होता, उसे उस एग्जाम को, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को हर साल होना चाहिए और कोई एलिगेशन नहीं लगना चाहिए। यूपीएससी भी कंडक्ट एग्जाम करवाती है। आपने कभी सुना है कि यूपीएससी में किसी ने एलिगेशन लगाया है या कोई करप्शन के चार्जेस हो या करप्शन के केसेस हो? तो हम उसी तरह सेम स्टेट में चाहते हैं।
1: इस बार जब एग्जाम दिया था आप कह रहे थे कोई फोन आया था?
0: हाँ, अक्सर सिर्फ मेरे पास नहीं, बहुत सारे एस्पिरेंट जो टीचर का वैकेंसी फॉर्म भरते हैं, तो सपोज कि अगर मैं डेटा, जब मैं फॉर्म भरने टाइम डेटा मैं भरता हूँ, तो वो तो सिर्फ कमीशन के पास होना चाहिए, वो तो किसी पब्लिक फिगर में जाना नहीं चाहिए। बट पता नहीं बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, इवन जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और जो मेंस लिखते हैं, तो उनको कॉल आता है कि आप अगर इस सब्जेक्ट में अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो इस अकाउंट में पैसा डाल दीजिए।
1: कितना पैसा?
0: कई 3 लाख 4 लाख अलग अलग डिमांड्स आते हैं। इससे पहले भी अगर आप न्यूज में देखे होंगे, झारखंड के लोकल न्यूज में इसे कवर करा था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि डाटा लीक कहाँ से हो रहा है? कमीशन के कोई लोग अंदर से है जो डाटा लीक कर रहे हैं?
2: Protesters, some of them on hunger strike are sitting. What's interesting is they've told me I can take out my chappals only at my own risk. कहाँ छुपाएंगे?
3: अंदर छुपा लीजिए।
2: अब तो बता भी दिया, अगर घूम गया ना मैं आपका चप्पल लेके जाऊंगी वापस।
3: चप्पल चोरी हो चुका है।
2: आपका चोरी हो चुका है। अच्छा,
1: आपने क्यों चूज किया कि आप अनशन पे बैठेंगे?
4: जी देखिए, हम लोगों ने सारी कोशिशें करके देख ली, सरकार तक बात मनवाने की, जो भी शांतिपूर्वक ढंग से हो सकता था हम लोगों ने किया, क्योंकि हम लोग कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ संविधान के दायरे में रह करके कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला, हम लोगों ने संविधान मार्च निकाला, हम लोगों ने यहाँ पे मशाल जुलूस भी निकाला और सरकार तक कहीं ना कहीं बातों को हम लोगों ने पहुँचाने का कोशिश किया कि यहाँ पे विद्यार्थी जो हैं वो आक्रोशित हैं और वो यहाँ पे पीड़ित हैं अपने हक को लेकर के, लेकिन फिर भी सरकार हमारी बातों को अनसुनी कर दी।
1: आप पर्सनली क्यों जुड़ी हैं? आप कितने एग्जाम्स में? आप
4: देखिए, मैं 2017 से एग्जाम देती आ रही हूँ। जेएससी का पहले मैं एग्जाम देती थी, 7 सालों से मैं जेपीएससी का एग्जाम दे रही हूँ। जेपीएससी के साथ पिछले 7 सालों से मैं लॉयल हूँ, लेकिन जेपीएससी कभी मेरे साथ लॉयल नहीं रहा। हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे धांधलियाँ, पेपर लीक, ये वो होता रहा है, जिसके वजह से किसी भी बच्चे के यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। मैं 14th जेपीएससी का बात करूँ तो यहाँ पे 103 में से 90 सीट ऐसे ही बेच दिए गए हैं। कहाँ पे किसी जेन्युइन स्टूडेंट का यहाँ पे जॉब हो पाएगा? एक बच्चा अगर 32 क्वेश्चन कलर करके आता है वो पास आउट हो जाता है, 48 क्वेश्चन कलर करने वाले पास आउट हो जा रहे हैं। हम लोग 142 करके आए हैं लेकिन हम लोग पास आउट नहीं हो पा रहे हैं।
1: आप मैम क्यों खड़ी हुई हैं यहाँ पर, क्यों अनशन पे?
5: मैं 2019 से जेएसएससी और जेपीएससी का तैयारी कर रही हूँ और जो जिस तरह जेपीएससी और जेएसएससी में धांधलियाँ हो जा रही है, इस वही रीजन है कि हम लोग को रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। हम लोग 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, 7 साल 8 साल 10 साल से भी तैयारी कर रहा है बहुत कोई, उन लोग का रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। जो बच्चा रात दिन पढ़ाई कर रहा है उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है, जो रात एक रात नेपाल में ले जाके रटाया जाता है उस बच्चा का रिजल्ट हो जाता है। तो हम लोग का अंदर से छला जा रहा है, वो तो हो गया, फिर जो अंदर से जो ओमारशीट है उसको अंदर से रंगा जाता है, उससे हम लोग को बहुत प्रभावित होता है। हम लोग जेन्युइन बच्चा है उनका रिजल्ट नहीं हो पाता, जो अंदर से रंगा जाता है उसका रिजल्ट हो जाता है। ये तो हम लोग के साथ गलत ना हो रहा है? अगर आज हम अपने लिए लड़ाई नहीं करें तो क्या मेरा आगे आने वाला जनरेशन के लिए कुछ बचेगा? पूरा अंदर से खोखला कर दिया जाएगा। इस झारखंड में इतनी धांधलियाँ चल रही है कि हम लोग छात्रों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, अंदर से एकदम वैकेंसियों को बेची जा रही है, एकदम उसका एक फिक्स रेट हो जा रहा है। ऐसे बताया जाता है कि इस पोस्ट के लिए इतना रेट है, इस पोस्ट के लिए इतना है। आप जिससे मिलिएगा वही आपकी सेटिंग करवाने के लिए हमेशा तैयार रहता है।
1: संविधान की कॉपी अपने पास आप रखी हुई है, अम्बेडकर का फोटो है, क्या सोच के संविधान का कॉपी पकड़ा है?
4: जी अभी हमारी ताकत जो है ना, संविधान ही हमारी ताकत है। यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन कर पा रहे हैं, ये हक हमें संविधान ने ही दिया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत ऐसे तत्व थे जो हमें तोड़ने की बहुत कोशिश किए, हमारे मनोबल को कम करने की ये लोग कोशिश किए, लेकिन हम लोग टूटे नहीं। और अभी जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमें आर्टिकल 91 का ए हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, जिसकी वजह से मैं आज बोल पा रही हूँ यहाँ पे आके। और आर्टिकल 91 का बी भी हमें शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पे सम्मेलन करने की इजाजत देती है। तो बस उसी के सहारे हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कह चाहे प्रशासन आके हमें मारे पीटे भगाने की कोशिश करे, तो मैं डटी रहूंगी, क्योंकि ये हक मुझे संविधान ने दिया है।
2: What you will see here is subtle references of Ambedkar, the Constitution. Earlier on, you'd always seen Baba Saheb Ambedkar being conjoined with Dalit assertion. And as at least I have seen, and I have covered now the Jantar Mantar protest and the protest here, you can see a marked difference as well, because now it's not just Dalit assertion. Baba Saheb Ambedkar is also now seen as the guiding light where India's constitution is concerned, the reason with which many of these young students are picking up his picture with a copy of the constitution. Sir, aapka naam?
6: Rahul Kranti.
2: Rahul, aap is kranti se kyun jude hain?
6: राज्य का भविष्य का सौदा हो रहा है, पैसे से तौला जा रहा है उनका भविष्य। हम 20 साल से परीक्षा का तैयारी करते हैं।
2: कितने साल से करी है?
6: 20 साल से कर रहे हैं, मेरा 39 साल हो गया एज। मैंने हाई स्कूल का भी परीक्षा क्वालिफाई किया, सिलेक्टेड कैंडिडेट से 20 नंबर अधिक नंबर लाया, इसके बावजूद भी मेरा नियुक्ति नहीं होता है। सहायक आचार्य का परीक्षा लिखा, उसमें भी क्वालिफाई हूँ, आपके कैमरे में भी मैं दिखा सकता हूँ, इसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं होता है, जबकि 14,000 सीट खाली रहता है। 26,000 एक पद पर बहाली निकलता है, तो उसको विज्ञापन एक बार हुआ, परीक्षा एक बार हुआ, तो रिजल्ट एक बार होना चाहिए, नियुक्ति एक बार होना चाहिए, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ सभी नियुक्तियाँ बटते हैं। 5 बार नियुक्ति पत्र सहायक आचार्य का बट गया, लेकिन अभी तक 26,000 एक पद पूरा नहीं हुआ। ये भी पूरी तरह से सौदा करते हैं, जितना सीट बिक्री होता है उतना सीट पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करते हैं, और जितने लोगों से पैसा लिए होते हैं उतना को नियुक्ति पत्र देते हैं। पूरी तरह से ये विक्रेता मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब ऐसे विक्रेता मुख्यमंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए। जेपीएससी मैंने लास्ट अटेम्प्ट इस बार मैंने ट्राई किया, लास्ट मेरा चांस था, और इसमें वो पेपर नहीं लिख हुआ, OMR लिख गया, तो क्रांति करना तो मेरा मजबूरी हो गया। मेरा सारा जवानी को इन्होंने खत्म कर दिया, मैंने पूरे जवानी को पढ़ने में लगाया, और मैंने सोचा था कि पढ़ लिख करके देश का एक सेवा करूंगा, चाहे जिस रूप जिस क्षेत्र में मेरे को सेवा का मौका मिलेगा। मेरा सपना चूर चूर हो गया है। और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम संवेदनशील हैं, 3 किलोमीटर हमारे प्रदर्शन स्थल से 3 किलोमीटर के दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, लोग दिल्ली से चल करके आ रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील बोलने वाले मुख्यमंत्री हम लोगों से मिलने नहीं आते हैं, कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजते हैं, तो कैसी संवेदना।
2: कितना साल आपने लगाया है इसमें?
6: पूरे 20 साल मैं बोलता रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाई कर, जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन समाप्त हुआ, फिर पीजी किया, पीजी के बाद बीएड किया, 11 में मैं बीएड कर कंप्लीट कर लिया था, और उस समय से मैं लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं सब माननीय मुख्यमंत्री के गलत नीति के वजह से कहीं सफलता नहीं हासिल लग रहा है। मैं सहायक आचार्य क्वालिफाई हूँ, हाई स्कूल टीचर क्वालिफाई हूँ, इसके बावजूद भी मुझे नियुक्ति नहीं मिला। इस बार जेपीएससी में बैठा था, इससे पहले सीजीएल में बैठा था, सीजीएल परीक्षा में, जिसमें अभय तिवारी बड़ा मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, तो उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वजह कि सीट तो पहले ही बिक गया था। अभय तिवारी जैसे हजारों दलाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पाल बैठे हैं कि जेपीएससी जैसे संस्था में कोई भी सरकार के रिश्तेदार या सत्ता पक्ष के व्यक्ति को नहीं होना चाहिए मेंबर, लेकिन ये अपने प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के पत्नी अजिता भट्टाचार्य को प्रवक्ता रखे हैं। हमको तो कहीं शक लग रहा है कि कहीं अपने प्रवक्ता अजिता भट्टाचार्य जो उनके प्रवक्ता की पत्नी है उन्हीं के माध्यम से OMR बाहर निकलवा करके और बेचने का काम किया गया है, सौदा किया गया है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि JPSC जैसे कमीशन से एक कागज के टुकड़ा भी निकालना होता है तो अध्यक्ष की सहमति होती है, इसके बाद ही एक कागज का रद्दी टुकड़ा भी निकलता है, तो OMR बाहर कैसे आया? मैं सीधा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूँ, सीधा आरोप लगाता हूँ कि सरकार की संलिप्तता, एजेंसी की संलिप्तता, आयोग की संलिप्तता के बाद इस तरह का कांड हुआ है। पेपर लीक का काम, OMR लीक का कांड और टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति बांटने का कांड। और इस संबंध में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जब दिल्ली में नीट का पेपर लीक हुआ था, पूरे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी प्रधानमंत्री के आवास घेरने पहुंच गए थे, लेकिन यहां झारखंड में हालचाल भी पूछने नहीं आ रहे हैं।
2: There are scenes that will remind you of Jantar Mantar here. I am at the protest site at the Jaipal Singh Munda Stadium, and with what we saw at Jantar Mantar as well, you have people coming in and trying to pitch in whatever way that they can where the protest is concerned. Well, we have all these Sikh gentlemen who've come here giving out Kesar Doodh at night, trying to fuel the protest in more ways than just what they are demanding. Sir, aap yahan par kahan se aaye hain aur kyun aaye
7: hain? Hum yahi Jharkhand se hi hain.
2: Jharkhand se hi hain. Aur aaj ye kesar doodh jo aap yahan pe bachchon ko, jo students hain unko de rahe hain, kis usse de rahe hain?
7: Hum as in seva de rahe hain bachchon ke liye yahan pe.
2: Aaj seva de rahe hain.
7: Seva.
2: Are you with them on their cause?
7: Bilkul. Hum unke saath hi hain, tabhi hum yahan aaj khade hain unke liye.
2: Unke liye, bachchon ke liye khade hain. Their demands are justified.
7: Bilkul.
8: We want to be in the right side of the history.
2: Want to be
8: in the right side of the history.
2: In the right side of history. What happened in Jantar Mantar was the right side of history.
8: Everything is a right side. Sab protest logo ke hit ke liye hai aur jo bhi protest ho raha hai wo sab logo ke hit ke liye ho raha hai. Sab koi apne liye lad rahe hain and jo lad rahe hain unke saath hain.
2: So you want to be counted for?
7: Bilkul.
2: Aapka naam batao.
9: Mera naam Ashok Kumar Love hai. और ये मेरा 11-13 JPSC का मार्कशीट है मैम। जितना कटअप चाहिए उसके बराबर अंक है मेरे, 653 नंबर। इसके बावजूद मैम ये मार्क्स है और मैं आपको कटअप दिखाता हूँ। ये कटअप देखिए जनरल का 652 है, बट इसमें हाइट चाहिए। लेकिन जो जो एक्साइज सर्विस है इसमें हाइट नहीं चाहिए, कोऑपरेटिव सर्विस है, इन दोनों के लिए मैं एलिजिबल हूँ। फिर भी मुझे कोई पोस्ट नहीं मिला।
2: क्यों नहीं मिला?
9: कारण ही नहीं बता रहे। मैंने इसके लिए सचिव से मिलना चाहा, मेल किया उनको, लिखित आवेदन दिया, उसका रिसीविंग भी मेरे पास है, और फिर मैंने RTI भी किया, उसके बाद अपील भी किया, उसके बावजूद कोई रिप्लाई नहीं। इसके लिए फिर हम लोग हाईकोर्ट गए, वहाँ से हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इनका कारण बताओ, नहीं तो आप जो है सो ये बताओ। हमने एक RTI किया कि मुझे डाउट था, चूंकि जो मार्क्स है मेरा उसमें मार्क्स भी एडजस्टेड बिक रहा था, चूंकि ये जो मार्क्स है वो मेरे एग्जाम के अनुसार कम थे, तो उसके लिए मैंने बोला मेरे पेपर दिखा दो, जो कि नियम है SOP में है कि इनको जो यदि कोई देखना चाहे तो अपना मेंस में मार्क्स देख सकता है, कॉपी ही नहीं दिखा रहे। 2 साल से ऊपर हो गया।
2: इतना? 2 साल?
9: 2 साल से ऊपर हो गया मैम। 24 जून 2024 को हमारा मेंस हुआ था। और मैम ये क्या देख रहा हूँ कि हम लोग आते हैं, हमारा मातृभाषा खुरठा है, मैं यहाँ का मूलवासी हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग का जो मार्किंग है मैम 80 से 90 नंबर में सबको फिक्स कर दिया जा रहा है। खोरठा में जो मार्क्स है, खोरठा में जो मार्क्स है मैम 80 से 90 मार्क्स दिया जा रहा है, और जो अदर स्टेट्स हैं पूर्वी दिल्ली उधर के जो लोग हैं उनका मार्क्स दिखाता हूँ मैं आपको, ये रैंक के साथ दिखा रहा हूँ, रैंक 11 है और इसमें जो है सो 7 है एडमिनिस्ट्रेटिव में। सुश्री सेजल सहरावत, इनको मैम 117 मार्क्स। अदर स्टेट्स हैं, यहाँ के जो रीजनल पेपर है उसमें 117 नंबर, 120 नंबर, 25 नंबर, यहाँ के जो लोग हैं उनको 80 मिल रहा है, 90 मिल रहा है, और ये एक एग्जांपल है, और ऐसे ऐसे लगभग 25 लोग हैं।
2: तो आपने इसमें देखा?
9: हाँ, इसमें इसमें पति पत्नी दोनों दिल्ली के लोगों का सिलेक्शन है। मैं रैंक के साथ दिखाता हूँ, एक देखिए ये 43 है, सुश्री शालिनी राठी, इनका जो देखिए पूर्वी दिल्ली से, ये वाइफ हैं, इनके हस्बैंड हैं 53 श्री विवेक कुमार, पति पत्नी दोनों सिलेक्टेड हैं टॉप रैंक से। और सारे के रीजनल पेपर्स में हम लोग से अधिक मार्क्स, रीजनल पेपर्स में हम लोग से अधिक मार्क्स। और हम लोग जो ये इतना नंबर लाने के बावजूद भी उससे बाहर हैं। कॉपी भी जैसे तैसे जांच हुई। एक है कि हम लोग ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है लेकिन कॉपी चेक करवा दिया गया जो 12th लेवल के टीचर हैं उनसे, किसी को कुछ भी मार्क्स दे दिया और अभी तक पेपर दिखाई नहीं रहे। बोले हमारा तो संवैधानिक अधिकार है, दिखाइए, जानना चाह रहे हैं, बट कोई जवाब ही नहीं आता उधर से।
2: आपने अपना कितना साल दिया है इसमें?
9: मैं सीरियसली 2018 से कर रहा हूँ। 7 जेपीएससी में भी मैंने करा था, उसमें भी इसी तरह इन लोगों ने 60 नंबर बैठा दिया रीजनल पेपर में हमारा। उसके बाद उसमें भी इंटरव्यू दिया था मैंने, और इसके बाद 11 to 13 जो जेपीएससी हो रहा, एक तो साल साल में होता नहीं, मैम 2 साल 3 साल इसी तरह हर बार फंसता जाता है। एक आंदोलन करना पड़ता है, उसके बाद मेंस के लिए आंदोलन करते हैं लोग, आ जाता है रिजल्ट, उसमें अनियमितता दिखता है, उसके लिए फिर आंदोलन करते हैं, और इस तरह से 2-3 साल जेपीएससी फंस जाता है। इस बार भी 14 जेपीएससी हुआ, उसमें भी मेरा पीटी हुआ, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं होगा। मैं जानता था कि मैं केवल इंटरव्यू देने के लिए गया हूँ, मतलब इंटरव्यू देने के लिए बना हूँ, इंटरव्यू दूंगा, उसमें मार्क्स मुझे अच्छे मिलेंगे, हाँ थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए लोगों को बता देंगे कि हाँ कि अच्छा फील हो जाएगा, हाँ पढ़ रहा है लेकिन लग रहा है कि जेन्युइन हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। स्थिति इतनी खराब है हमारी, एक एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जी, एकदम जो ठेठ देहात कहते हैं वहाँ से आते हैं, और बस एक गलती कर दी हम कि हमको झारखंड का एग्जाम, मतलब कि हम झारखंड का एग्जाम देंगे।
2: जबकि मैं क्वालिफाइड तो है
9: नहीं,
2: आप कह रहे हैं आप ग्रामीण से आते हैं पर क्वालिफाइड तो हैं आप,
9: लेकिन पता नहीं मैम वो जो अलग योग्यता चाहिए यहाँ पे मैम, जो मैं नहीं दे पा रहा।
2: स्थिति ठीक नहीं है,
9: बहुत खराब है मैम, बहुत खराब है। हम लोग है ना कमरे से बाहर कभी निकलते नहीं थे, मीडिया के सामने तो कभी आते ही नहीं थे, आंदोलन तो डर लगता था कि ये पॉलिटिक्स होता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन देख रहे हैं हमारे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा ना, तो अब बोले कि आ ही जाते हैं, ऐसे भी कुछ होना नहीं है, देख लेते हैं एक बार ये भी रास्ता अपना करके।
2: इसीलिए
9: और कोई पर्पस नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं बचा। कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में हम कितना हियरिंग के लिए 25,000-20,000 कहाँ से पैसे दें। मैं अभी दुकान में काम कर रहा हूँ, कपड़े की दुकान में काम कर रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है मैडम, कॉलेज में मैं टॉपर रहता था, मेरे सारे दोस्त ना MNC में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे से ना मैं सबसे कट गया हूँ, सोशल मीडिया से कट गया हूँ, क्या मैं बताऊँ, क्योंकि मैं कपड़े की दुकान में काम कर रहा हूँ, कॉलेज टॉप कर करके इंटरव्यू दे दे करके जस्टिफाई नहीं कर पाता। मेरे भैया ने दुकान खोल दिया कि चलो कहीं ज्यादा डिप्रेशन में ना रहो, कि कहीं इंगेज रहोगे, कर ही नहीं पाता जस्टिफाई, बार बार लगता है कि मैं, मतलब ये आ जाता है, रोना आ जाता है। और एक देहात क्षेत्र से ना, मतलब लोग ना पहले एग्जांपल देते, देखो उनका बच्चा है वहाँ पढ़ रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, 8-10 साल लोग देख लिए ना, अपने बच्चों को बाहर भेजने नहीं लगे पढ़ने के लिए, कहते क्या कर लोगे पढ़ के, वो तो उतना पढ़ाया क्या कर लिया, कपड़ा दुकान में बैठा हुआ है। बस एक रहता ना कसक रह जाता है मैम कि हम जो मौका मिला ना हम दूसरे बच्चों को दे, इसलिए बस लगे रहते हैं एक होप में, कोई नहीं इस बार भी होगा, इस बार भी देंगे, और किसी तरह एक बार हो जाए यदि तो हम जो आने वाला पीढ़ी है उनके अधिकार को न मार दें, उनके साथ अन्याय हो जा रहा है मेरे कारण। ये सिर्फ मेरे साथ साथ अन्याय नहीं हो रहा है, पूरा मेरा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना आसपास के क्षेत्र में सारे बच्चों के साथ अन्याय हो जा रहा है, नहीं पढ़ा रहे लोग, विश्वास ही नहीं कर रहे। मेरे उम्र के लोग जिनके बाल बच्चे हो गए 30-35 हज़ार बाहर जाके ट्रांसमिशन लाइन में जाके कमा ले रहे हैं, और वो हम पे भी ताना मारते हैं कि तुम क्या किया, 15-20 लाख खर्चा कर दिया, इंजीनियरिंग में कर दिया, 3-4 साल दिल्ली में रहे, तैयारी में कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आता हम गलती किए कहाँ, क्या झारखंड का एग्जाम सेलेक्ट करके कि चलो अपना मातृभूमि है यही सेवा करेंगे।
2: सत्येंद्र क्यों आए हैं इस पोस्टर के साथ, क्यों आए हैं?
10: मैम जैसा कि शिबू सोरेन जी को झारखंड निर्माता जाना जाता है, उनके कुछ सपने थे झारखंड को लेकर के, उनके कुछ एस्पिरेशंस थे झारखंड को लेकर के, उन सपनों पे उनके पुत्र और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पानी फेरने का काम किया है। तो एज अ सन और एज अ CM ही फेल्ड शिबू सोरेन जी, तो उसी के लिए एक जो मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर का फेमस डायलॉग बेटा तुमसे ना हो पाएगा, कि पोस्टर मैंने ये बनाया है कि शिबू सोरेन जी की दिवंगत आत्मा अपने पुत्र से कह रही है बेटा तुमसे ना हो पाएगा।
2: आपने कितनी कोशिश की, कितने एग्जाम दिए?
10: मैम ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, लास्ट 11th to 13th JPSC में मैं क्वालिफाई किया था, मेंस अपियर हुआ था, अभी इस बार भी प्रीलिम्स क्वालिफाइड था, मेंस अपियर होने वाला था, बट तब तक पता चलता है सीटें बेची जा चुकी थी।
2: कितना इन्वेस्ट किया है अपने?
10: इन्वेस्टमेंट मैम मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट है मैम, और ये केवल मेरी नहीं पूरे झारखंड की जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट की है, इन्वेस्टमेंट है, सभी इन्वेस्टमेंट पे पानी फेर गया है मैम। लोग हताश हैं, निराश हैं, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं पूरे छात्र। लोग लाइब्रेरी छोड़ करके सड़क पे भी आए हैं, भरी बारिश में आप देख रही हैं, वर्ड्स नहीं है मैम।
11: शिवू सोरेन अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, छात्र जिंदाबाद।
12: पूरा जेपीएससी और जेएससी सिस्टम पूरा ऊपर से नीचे उसमें दीमक लग गया है, उसमें सर्जिकल ऑपरेशन का जरूरत है आज।
1: आपने कितना अटेम्प्ट किया है?
12: ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है।
1: प्रिलिमिनरी क्लियर किया है?
12: हाँ, इस बार मैंने पीटी क्लियर किया हुआ है।
1: क्लियर किया हुआ है पर विश्वास नहीं है?
12: विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। पिछले बार हमने देख लिया इसका जो रवैया रहती है यहाँ की सरकार का।
13: सभी मेंबर जो है जेपीएससी के अंदर वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं। मैं भी पिछले बार इंटरव्यू दिया हूँ, इस बार प्रीलिम्स एग्जाम मेरा भी हुआ था, मैं मेंस देने वाला था। अब सोचिए,
1: नाम नहीं आया?
13: नहीं नहीं, प्रीलिम्स में तो मेरा नाम आया, मैं मेंस देने वाला था, अब मेंस ही नहीं हुआ। OMR एक जो सबसे ट्रिगर पॉइंट था, एक OMR रिलीज होना, वो 14 जेपीसी कुछ नहीं है, जितने बड़े लेवल का धांधली इससे पिछले जेपीसी में हुआ है। 342 सीट था और उसमें बहुत मास लेवल पे धांधली हुआ। यहाँ का एक लोकल लैंग्वेज होता है खोटा, तो खोटा में हम लोग खोटा वासी हैं, बचपन से ही खोटा बोलते हैं, लेकिन हम लोग का मार्क्स मात्र 80 नंबर, 75 नंबर, 90 नंबर के सीमित हो गया। बट जो हरियाणा वाले लोग हैं उनका 117 नंबर, 120 नंबर
1: लोकल रीजनल में।
13: जबकि उनके साथ जो ट्रेनिंग कर रहे थे, हम लोग के ही दोस्त थे, उनके मतलब रूममेट भी बने हैं ट्रेनिंग सेंटर में, उन लोग बता रहे हैं कि इन लोग एक पेज खोटा नहीं लिख पाएगा। और उन लोग अच्छा अच्छा रैंक लगे, जिस तरह आप सुने होंगे 40 रैंक रवि कुमार का नाम, जो पूर्वी दिल्ली का रहने वाला है, वो मास्टर माइंड था किसी सिंडिकेट गैंग का। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है ये पुलिस वेरिफिकेशन, ये वेरीफाई लोग कैसे किए?
14: ये वैकेंसी आया ही नहीं, और मेरे पिताजी तो चले गए, बट ये सपना सपना ही रह गया। अभी हमारा मतलब कि ऐसा है कि करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे।
1: अभी कितना एज हो गया
14: मैम? मेरा अभी 28 हो गया मैम, तो अभी चीजें ऐसी हो गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नहीं है, ब्लैंक हो गया सब कुछ। और अभी क्या ही मैं बताऊं, जेपीएससी जेएसएससी सब में धांधली है कम्प्लीटली। छोटा से छोटा पोस्ट भी यहाँ पे पता चलता है कि सोल्ड आउट हो जाता है। कि अभी जो है 30 साल तक का इसका रहता है, 21 से 30, क्योंकि जनरल का कैटेगरी वही रहता है। ओबीसी में 2-3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो ओबीसी में फ्री में लेयर बनाओ, ये करो वो करो, बहुत सारे उसमें होते हैं। तो मैम अब 2 साल के बाद मैं एलिजिबल भी नहीं रहूंगा, बताइए। मतलब पूरा एक आदमी का एज निकल गया लेकिन वैकेंसी तक नहीं आ रही है, और उसमें भी सरकार जो आश्वासन देती है कि अब आएगा और बम्पर भर्तियां आ रही है, कहाँ है मैम, कहाँ है? कुछ दिखता नहीं है। हम लोग मतलब परेशान हताश इस प्रकार से है ना, प्रताड़ित इस कदर से हो गए कि रात रात में हम लोग को तिरपाल भी ऐसे लेकर के खड़ा होना पड़ रहा है ना, तो हम लोग रह रहे हैं, पूरा भीगा हुआ हूँ मैम अभी। बट क्या करूँ, हम लोगों के पास कोई होप नहीं, होप यही है कि लड़ना है। कि झारखंड में जल है, जीवन है, जंगल है, पहाड़ है, नदी है, टूरिस्ट प्लेस है, मंदिर है, सब चीज है मैम, लेकिन झारखंड सरकार में आज कुछ किसी चीज का कमी है, तो वो है विजनरी लीडर, जो हम लोगों के पास नहीं है।
15: 2016 के बाद आज तक झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुआ, जिससे कि इस राज्य में शिक्षक बन पाएंगे, अभी तक नहीं हुआ। आप समझिए कि जो इंसान 2016 तक 17 में बीएड किया होगा, एक भरोसे एक उम्मीद एक विश्वास के साथ में कि हम राज्य में शिक्षक बनेंगे, राज्य की सेवा करेंगे, आज 2026 होने वाला है मैम, कहीं ना कहीं उसका एज 32-33 साल होने वाला है, सिर्फ एक उम्मीद में कि हम राज्य में शिक्षक बनकर राज्य की सेवा करेंगे। और जब भर्ती निकलती है ना मैम, तो जो 2016 में जो जेटेड पास थे उसके लिए 2024 की वैकेंसी जब आई थी, सहायक आचार्य की वैकेंसी 2023 में, तो सबसे पहले उसमें सीटेट और जेटेड दोनों के लिए मैंने था। जैसे मान लीजिए जेटेड परीक्षा नहीं ले रही, तो ये तो है कि जो सीटेट पास है तो एलिजिबल हो सकता है। सीटेट हम लोग पास थे, हम लोग फॉर्म भी भरे थे, एग्जाम भी दिए, रिजल्ट भी आया, लेकिन सरकार अचानक क्या बोलती है कि नहीं, जो जेटेड पास है 2016 में, जो 2016 में जेटेड पास है वो, और फिर हम लोग बाहर निकल जाते। अब समझिए इतना खराब चुकी है, मतलब जो झारखंड की जो व्यवस्था है ना मैम, आप समझिए 2016 के बाद 17 के बाद दरोगा का वैकेंसी नहीं आया, 2015 के बाद झारखंड पुलिस का वैकेंसी नहीं आया, 2017 के बाद राजस्व कर्मचारी का वैकेंसी नहीं आया, 2017 के बाद पंचायत सचिव का वैकेंसी नहीं आया। आप समझिए कि जो इस राज्य में जो पैदा होता है, जो माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, उसका एक उम्मीद एक विश्वास एक भरोसा होता होगा कि इस राज्य में हम अपना बेटा बेटी को पढ़ाकर इस राज्य की मैं सेवा कराएंगे, सरकारी नौकरी लेकर राज्य की सेवा करेगा मैम, यहाँ के बच्चों के सपने और उनके माँ बाप के सपने को कुचला जाता है, सरेआम कुचला जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी ओएमआर खाली हो जाता है और इसी तरह सब खत्म हो जाता है मैम।
2: Jantar Mantar today is the Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi, Jharkhand. Tomorrow, this will be a theater in some other state. It's not about governance. It's the angst of youth. And this should be a wake-up call for everyone because it's not stemming. It's out in the streets. It's in solidarity. It's in protest. And they are up in arms. They want answers. They want systematic changes. And we have to listen. Otherwise, they will make us listen. This is not stopping anytime soon. Reporting with camera person, Pawan Kumar, Preeti Chaudhary, in Ranchi, Jharkhand, for India Today.

7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया, मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है, आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।

0: are watching India Today.
1: संवाद के बारे में मैं तो बिलीव करता हूं दैट डायलॉग कैन सॉल्व एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम लोग बोलते हैं कि डायलॉग व्हेन इट फेल्स तो आंदोलन करना जरूरी है, और अभी हम लोग ने देखा थोड़े दिन पहले कि एक आंदोलन हुआ था. एंड लोकतंत्र में मैं ये मानता हूं कि द टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, वन इज डायलॉग, सेकेंड इज आंदोलन. The idea is that आंदोलन only happens when dialogue fails. तो कई लोग ऐसे बोलते हैं और कई लोगों का मानना है कि भारत सरकार ने यदि पहले ही डायलॉग कर लिया होता, पहले ही जेन जी से बात कर ली होती, तो देन आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती. तो इस पे आपका क्या राय है, एक, और दूसरा कि आंदोलन करना खराब है क्या? ये दो प्रश्न है स्टार्ट में सर.
2: आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है. हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा. आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा. डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है. लॉट ऑफ व्यूज कम टूगेदर एंड ए कॉन्सेंसस इज इवॉल्व आफ्टर डिस्कशन. द डिस्कशन मे हैपन थ्रू डायलॉग ड्यू टू वेरियस रीजन. इफ दैट थिंग इज नॉट हर्ड, एजिटेशन पर जा सकते हैं, लेकिन ये सब करना है टू इवॉल्व द कॉन्सेंसस, नॉट टू क्रिएट डिविजन्स. अब जेन जी की बात है तो अभी जो हुआ है, ग्रीवंस तो जेनाइन है. भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए. डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात. और मेरा अनुभव ऐसा है जेन जी के बारे में, हम लोग जेन जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे, तो उस समय की परिस्थिति. अभी जेन जी, वो जेन अल्फा, वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए,
1: करेक्ट,
2: और इसके साथ प्यार चाहिए. प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं. आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं पूछूंगा, तुम कौन हो तो पूछने वाले, ऐसा होगा. लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूंगा. तो ये बातें होनी चाहिए डेमोक्रेसी में.

0: तरीका है। अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, लेकिन हमारे यहां शब्द है शास्त्रार्थ। उसमें वाद और प्रतिवाद नहीं होता है, उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है। तो हम सब पहलुओं को देखते हैं और हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है, तो एक नया डायमेंशन ध्यान में आता है हर सब्जेक्ट का। तो वी गेट सो मेनी ओपिनियंस, इवन कॉन्ट्ररी ओपिनियंस, दैट टुगेदर फॉर्म द टोटल व्यू ऑफ द ट्रुथ। तो ये होना ही चाहिए। तो जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अगर दो स्पीचेस हमने पढ़ लिए, तो ये कैसे करना क्या करना उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए। और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
1: बिल्कुल
0: उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए।
1: करेक्ट,
0: तब सब ठीक रहता।
1: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
0: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी, करनी चाहिए, ऐसे मैं मानता हूं।
1: ठीक। और इसमें थैंक यू उत्तर के लिए, पर इसमें आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो। तो सर
0: इसमें वो मैं कह रहा हूं ना,
1: इसमें
0: मैं कह रहा हूं कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं
1: जी,
0: अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
1: जी सर।
0: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है। तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
1: आप क्या मानते हैं?
0: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
1: अरे वाह, बढ़िया है।
0: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
1: थैंक यू सर, ये आपने बताया इस सबसे ऑनेस्ट जनरेशन जेन अल्फा है। लोग बोलते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप है, तो आजकल के बच्चे जेन अल्फा है, जेन जी है। पर सर, तो कई बार ऐसे विषय आता है कि जैसे अभी प्रोटेस्ट में आंदोलन में हुआ था कि ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है उनपे कई बार, जो इनोसेंट है उनके उनपे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था, तो ये सारे,
0: अब
1: ये सारे विषय के।
0: और एक बात,
1: हाँ, आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए?
0: ये जो बातें है ना
1: जी,
0: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
1: जी।
0: लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूँ। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा।
1: क्या बात है, वाह। अभी आपने एक चीज बताई जैन जी के बारे में कि आप वो ऑनेस्ट है, आप आंख बंद करके उन पे विश्वास करते हैं, और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई एडुकेशन के बारे में और शिक्षा के बारे में. ये संस्था में 300 अभी शिक्षक बैठे हैं, प्रिंसिपल्स एंड ओनर्स ऑफ स्कूल्स, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन सर. एंड देयरफॉर आई वॉन्टेड टू आस्क यू दिस सर, कि 15 लाख स्कूल्स में अभी भी 1 लाख स्कूल्स है भारत में जहां हम लोगों के पास टॉयलेट्स की सुविधा बच्चियों के लिए नहीं है. तो सर बेटी गाइस लेट मी फिनिश द क्वेश्चन. तो सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अच्छा स्लोगन है, पर ये स्लोगन में बेटी पढ़ेगी कहाँ यदि उधर व्यवस्था ही नहीं है टॉयलेट की. तो सर ये एक सर दूसरा इसमें सर 15,000 स्कूल में अभी तक बेसिकली वाटर की फैसिलिटी नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है. तो सर शिक्षा मैं मानता हूँ कई चीज़ हुई है शिक्षा में, बट शिक्षा में बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए. और मेरे लिए तो ये नेशनल इमरजेंसी है क्योंकि देश को यदि विकसित बनाना है तो शिक्षा ठीक करनी पड़ेगी. तो आप ये मानते हैं कि दैट द नेक्स्ट जनरेशन टू बिकम स्ट्रॉन्गर वी शुड फोकस मोर ऑन एजुकेशन, एंड इफ सो व्हाट इज द वन एजुकेशन रिफॉर्म दैट यू प्रपोज सर?
0: पहली बात एक से नहीं होगा, मैं 2-3 बताऊंगा.
1: जी सर.
0: पहला है कि शिक्षा ये कमर्शियल बिजनेस नहीं है
1: जी.
0: वो जीवन की नेसेसिटी है, इसलिए शिक्षा सर्व सुलभ हो सबको मिले ऐसा उसका स्ट्रक्चर करना चाहिए. तो इसमें तो बहुत सारा विचार करना पड़ेगा फीस को लेके सारी बातें. दूसरा, शिक्षा हम सबकी रिस्पांसिबिलिटी है, तो जिसका काम वो ठीक करे वो होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहिए. लेकिन मैं अपने जगह क्या कर सकता हूं, उदाहरणार्थ कई जगह कई स्थान है हमारे यहां, तो ग्रामीणों ने और कार्यकर्ताओं ने मिलके वहां के स्कूल को ठीक किया. तो ये ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, तो गांव वालों ने थोड़ी थोड़ी संसाधन जुटाकर ये फैसिलिटीज उत्पन्न की. पास के शहर में किसी भले आदमी को पकड़ा, कंप्यूटर स्क्रीन उसने स्कूल में लगा दिए, ऐसा करके किया. अब शिक्षा का जो फाइनेंशियल बर्डन है, अगर समाज पूरा ध्यान देगा, क्योंकि ये शिक्षा सरकार की दी हुई वगैरह नहीं है, ये हमारे बच्चों की शिक्षा है, तो हमारे बच्चों की शिक्षा ठीक हो इसलिए हमको भी एक्टिव रहना चाहिए, विजिलेंट भी रहना चाहिए और असिस्ट भी करना चाहिए. ये अगर एक्टिविज्म हुआ तो ये सुधार बहुत जल्दी आएगा. बाकी जिनको शिक्षा देनी है उनका भी ट्रेनिंग होना चाहिए. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टीचर्स, ट्रेन दी टीचर्स, ये करना चाहिए. बाद में फिर पाठ्यक्रम वगैरह बातें आती है, बाद में कहते हैं नहीं बाद में करने की नहीं है, साथ साथ करनी है. लेकिन बेसिक तो ये है कि शिक्षा हम अगली पीढ़ी बनाने के लिए दे रहे हैं, स्कूल चलाने या पैसा कमाने के लिए नहीं दे रहे, ये होना चाहिए. और हम सब लोगों का सहभाग उसमें होना चाहिए, सब लोगों का ध्यान रहना चाहिए, तो ठीक रहेगा. ये दो बदल अगर हम करेंगे तो बहुत जल्दी बातें ठीक हो जाएंगी. ऐसा कुछ जो हुआ है थोड़ा सा इस दृष्टि से, उससे मेरा अनुभव है. और बोल ही देता हूं मैं, आप लोग भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे आगे, 15 साल हो गए अब हमारी एक ताकत बन गई है, उसके भरोसे ऐसा अगर समाज को साथ लेकर शिक्षा में कुछ ठीक ठाक करना ऐसा आप लोग करने लगे तो इस प्रयास में और बहुत एक बड़ी प्रयास की मात्रा जुड़ जाएगी.
1: थैंक यू. प्रयास ये रहेगा कि एडुकेशन में भी अभी ऑन ग्राउंड जाके स्कूल्स में क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी क्या करना है, कैसे करना है वो करेंगे. पर इसमें सर आपने टीचर्स के बारे में बात की, तो जस्ट वन क्विक फॉलोअप इसमें कि 10 लाख टीचर्स की वैकेंसी भी है आज की तारीख में. ये बात सही है कि 1 करोड़ टीचर्स है बट 10 लाख टीचर की वैकेंसी है सर? तो ये मैं मानता हूं, और मैंने जब ये पूरा आंदोलन हुआ था तभी मैंने एक प्लैकार्ड लिया था, नॉट फॉर CJP नॉट फॉर BJP, आई एम फॉर एडुकेशन, हाउ मेनी लाइक मी, ऐसा करके मैंने सर लिया था. तो पर सर इसमें सुझाव हम लोग ने दिया था कि प्लीज फॉर्म अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड वो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई गई जो ए पॉलिटिकल कमिटी है सर. पर 2024 में भी ऐसी कमेटी बनाई गई थी, राधाकृष्णन सर की कमेटी। ये कमेटीज बनाते रहते हैं हर सरकार सर, पर सर कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है। तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एडुकेशन सर?
0: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
1: बढ़िया है,
0: हम तो एडुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन ये मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए।
1: एडुकेशन के अलावा जेन जी और जेन अल्फा को बहुत अनेक अन्य चीज इन्फ्लुएंस करती है, उसमें से एक बड़ी चीज जो मैं मानता हूं, जो आंदोलन में भी देखा गया, वो है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम के वीडियोस बहुत प्रभावित करते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे सर ऐसा ही है, एल्गोरिथम जैसे चलते हैं, तो मतलब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के वीडियो लाइक कर लो तो आपको एक ही तरीके की विचारधारा मिलेगी, आप राहुल जी की वीडियो लाइक कर लो तो दूसरी तरीके की विचारधारा मिलेगी। तो इसमें जो बच्चों का जो हो रहा है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पोलराइज्ड। तो सोशल मीडिया पे जो रील मॉडल्स भी है, तो एक तो ये पोलराइजेशन का विषय है, और दूसरा है सर, जब मैं क्रिकेट देखता था तभी मेरा रोल मॉडल राहुल द्रविड़ था, तो वो सर 100 बॉल में 1 रन बनाता था, सब लोग ताली बजाते थे। सर अभी जनरेशन बदल गया है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जनरेशन है, वो लोग को लाइक तुरंत चाहिए, वो लोग को चीज तुरंत चाहिए, क्योंकि वो लोग के जो रील मॉडल्स है जो इंस्टाग्राम पे दिखते हैं वो वैसे है। तो हम लोग दोष ठहराते हैं जेन जी को जब भी कुछ गलत बोलते हैं वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, जो वो बोलना नहीं चाहिए, पर एट द सेम पॉइंट इन टाइम सोशल मीडिया और समाज का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो हाउ शुड इंडिया टैकल सोशल मीडिया? अन्य देशों ने तो बैन कर दिया बिलो दी ये जो 16, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है वगैरह, तो बैन करना चाहिए या दूसरा कुछ तरीके से उपयोग करना चाहिए इसका?
0: आपके प्रश्न में ही उत्तर है, नियम बनाना, डिसिप्लिन बनाना ये ठीक है, लेकिन ये तब यशस्वी होता है जब एटीट्यूड बदले। न तो कानून तो बहुत बने हैं, उनका क्या हो रहा है? तो समाज माने तब कानून चलता है। तो आपने बताया कि रोल मॉडल वैसे है, रोल मॉडल तो पहले पीढ़ी के वो वैसे है, तो रोल मॉडल को बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना। हम एक जैसे सोशल मीडिया पर एक मैं इकॉन हूं, तो मुझे ये एहसास चाहिए कि मेरे कारण 10 लाख लोग अनुकरण करते हैं मैं जो करता हूं उसका, तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी हो गई कि 10 लाख लोग मेरे पीछे चल के गड्ढे में न जाए, इतना तो मुझे देखना है, ये विवेक चाहिए। सोशल मीडिया में अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे आपके चित्र बना पर भी हमारे मुंह में शब्द डालकर आवाज उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना, ये देखना चाहिए। तो कुछ डिसिप्लिन हमको, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन अबाउट द मीडिया, ये करनी पड़ेगी। अरे उनमें ये विवेक उत्पन्न हो क्या करना कैसे करना, ऐसा उसके बाद अगर ये डिसिप्लिन वगैरह लागू होती है तो वो काम करेगी, नहीं तो फिर किसी बात को बैन करो आप तो वो 2 नंबर के मार्केट में चली जाती है और ज्यादा जोर से चलती है, ये नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर देना है तो पूरे समाज को ऐसा उत्तर देना पड़ेगा, सरकार सहित, तो तभी ये काम होगा।
1: सर अभी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, वो डायलॉग जो था अभी इंस्टाग्राम का मीम बन गया जैसे, मतलब वो पोस्टर बन गया, पर ये पोस्टर से निकल के एक्चुअल में परंपरा सेम रहनी चाहिए। एंड ये आपने जो बताया दैट सही रोल मॉडल्स चुनने चाहिए, पर इसमें एक चीज है, जो ज्यादा हेट करता है, ज्यादा वायलेंस करता है, तो उनको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, उनको ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। आज शायद से राहुल द्रविड़ को T20 टीम में मौका भी ना मिले, तो जमाना थोड़ा बदल गया है, तो इसमें नए रोल मॉडल्स को सामने कैसे लाए?
0: अब ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, ऐसा भी हम कहते हैं ना, वी यानी जैन जी वगैरह वगैरह सब, दे डोंट सब्सक्राइब टू वायलेंस, देन व्हाई दे बिलीव इन द रोल मॉडल्स विच आर वायलेंट, ये हमको विचार करना पड़ेगा। सो वी हैव टू डिसाइड मेरा पर्पस क्या है, मेरा क्या है, उसके अनुसार हमको विचार करना पड़ेगा। तो वहां एक बात, यहां एक बात, ऐसा तो नहीं चलेगा।
1: दूसरा विषय जो इंटरनेशनल बच्चों में काफी बातचीत होती है, अभी भारत में बातचीत होती है, अबाउट द LGBTQIA+ कम्युनिटी, तो ये विषय पे आपने कई बार बोला है, एंड यू हैव स्पोकन एंड यू हैव सेड दैट एवरीबॉडी इज अ पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी एंड वी शुड ट्रीट एवरीवन इन द सेम मैनर। बट सर, माय क्वेश्चन देन टू यू इन दिस इज कि सेम सेक्स मैरिज जो है अब तक वो लीगलाइज नहीं किया गया है, एंड संघ की विचारधारा इस पे और जेन जी और जेन अल्फा में ये काफी बात होती है, उसके लिए मैं आपको पूछना चाहता हूं दैट व्हाई इज द आरएसएस स्टेटिंग दैट सेम सेक्स मैरिज शुड बी डिसअलाउड।
0: तो सेम, डिड आई एवर से सेम मैनर,
1: सॉरी सर,
0: Did I ever say same manner?
1: No, sir.
0: No.
1: No.
0: LGBT or whatever, yes, they are sir. All part of the society.
1: Thank you.
0: Which we belong to. Yes, and in our society, there is a tradition of accommodating. There were systems. Now, marriage is not in our tradition, vivaha. That is not a convenience created so that two people should live together. It is an institution which is created by marriage, family. Family is unit of society. And next generations are trained in kutumba or family to be good citizens of that country. So training of next generation by their relations, mata, pita, all these things. That is also an ancient system running. Now, we have to have some system first. The existing system if we disturb, and new systems we don't have, that will create a conflict. Secondly, we cannot mix these things. We have to prepare the society first, because laws don't dictate society. Society dictates the laws. Hai na?
1: Yes.
0: So we have to educate the society first. That stage is not there. And at this stage, if we tamper with the vivaha system, that will create some other side effects. So instead of that, prepare a system which can accommodate all these people. They are part of the society and it should be seen to accordingly. That is definite. But manner can change. Manner has to change. This situation, we have to have these special measures. That is why same-sex marriage, don't say that. How these same-sex companions can live together, you have to devise some system. You can form a law for that. Society will accept that.
1: ये education में और employment में एक मुद्दा main है जो है reservation, sir. और reservation जब से चालू हुआ है, it is important to get reservation till the last person, because the ones who do not get opportunities deserve the reservation. But शायद से अंबेडकर जी ने भी नहीं सोचा होगा कि reservation अब तक continue हो रहा है. I'm just following up on that क्योंकि आपने ये बोला है, तो फॉर जनरल पॉपुलेशन सर, द थिंग इज सर, रिजर्वेशन बढ़ता जा रहा है, एक राजनीतिक विषय बन गया है, एंड एक्चुअली जो टॉप 1% ऑफ SC ST है सर, दे हैव बिकम द क्रीमी लेयर, जैसे OBC में हुआ है, और सर वो ही सारे रिजर्वेशन ले लेते हैं, तो जनरल कैटेगरी के बच्चे जैसे मैं हूं सर, मेरिट में अच्छा था, इतना अच्छा भी नहीं था, पर मेरिट में अच्छा था, पर सर कट ऑफ लिस्ट में मेरा नाम लास्ट आया। तो सर मैं खाली इतना पूछना चाहता हूं कि रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू यू Do you think it is a it should be lifelong, or do you think now it is perhaps time in order to curtail reservation and bring it back, both in employment and education, sir?
0: I will not answer you directly. I will ask you to go to what Dr. Babasaheb Ambedkar thought about reservation. If honestly we follow his advice, then there is no problem. Social कारणों से reservation है. Social discrimination जब तक है, reservation चलेगा. जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया, उतना large hearted चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए. और अगर ये ठीक से होता है तो वहां ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहां रिजर्वेशन मिलता है जी. वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो. कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया जी. ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए. तो देर इज ए स्ट्रीम इन दोज हु गेट द रिजर्वेशन दैट this is for our upliftment, this is not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves and make this useful for others, those who haven't got yet. ye wahan stream hai, usko encourage karna chahiye. isme rajniti chhod deni chahiye. sare measures ko pramanikta se implement kiya to jaldi uski avashyakta samapt hogi, tab vichar karenge. लेकिन इसकी राजनीति हुई, इसलिए बैड ब्लड क्रिएट होता है. वास्तव में सामाजिक एकता के लिए यह मेजर लाया गया है. वो डिविजिव उपयोग उसका करने वाली, इन इटसेल्फ मेजर इज नॉट रॉन्ग, बट दोज हु विल्ड दिस वर्ड दे आर विल्डिंग इट रॉन्ग वे इंटेंशनली. अनलेस दैट इज क्योर्ड, आई डोंट सी एनीथिंग.
2: Watching India Today.

0: monsoon, Nagpur's chitar Oli becomes alive with the sound of chisels and the promise of Bappa's arrival. But the festive season, the biggest talking points now, the rising cost of devotion. Third generation idol makers say prices have gone up by nearly 30%.
1: जिससे 25% मूर्ति जो रेट बड़े हैं, लेकिन हम मट्टी के कलाकार होने के कारण हम उतना तो नहीं ले रहे, हम थोड़ा सा हम भी नुकसान सहन करने के लिए तैयार है। 15% से आसपास हम महंगी मूर्तियां हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग जो है अभी तो सब रॉ मटेरियल महंगा हो गया है।
0: Yet workshops continue to innovate with fresh themes and customized Ganpati idols drawing buyers.
2: महंगाई की मार तो है, कलर वलर सब थोड़े महंगे हो गए हैं, लकड़ी उकड़ी मट्टी उट्टी सब महंगे हो गए। थोड़ा क्या हम लोग 100-200 रुपए ज्यादा मांग लेते छोटे मूर्ति में, कस्टमर दे देते पैसे।
0: Despite the higher price tag, devotion remains untouched. Families have begun booking their bappa.
3: जो पर्यावरण फ्रेंडली है, जिसे हम इजीली हम घर ले जा सकते हैं, जिसे हम विसर्जित भी अच्छे से कर सकते हैं, वैसे वाली मूर्ति पसंद है हमें। पीओपी हम नहीं यूजुअली हम प्रिफर करते हैं।
4: पिछले 10-12 सालों से यहीं से मूर्ति लेता हूं, बहुत सुंदर मूर्तियां बनती है। और आप 1.5 महीना पहले आएंगे तो इनकी ऑलमोस्ट सब मूर्तियां बुक हो जाती है।
0: हायर कॉस्ट मे हैव रीशेप्ड द मार्केट बट नॉट द फेथ. With Yogesh Pandey, Bureau Report, India Today.

0: Okay, but our big story that we are breaking at the moment, a short while ago, Mohan Bhagwat, the RSS Sarsang Chalak, spoke at length on the Gen Z protest for the first time in an outreach at a convention held by a students group, IMUN. Mohan Bhagwat said, protest is legitimate. It is a means of dialogue. The students' grievances, he said, importantly, are genuine. The education system does need improvement, is what Mohan Bhagwat said. Said protest must be within the constitution's ambit. Today's generation is the most honest. Cannot talk on the crackdown without info, but it is not anti-national to protest. And Andolan is legitimate. So clearly, Mohan Bhagwat making his views clear. And many would say that they are rather different from what other RSS leaders have said, or indeed even members of the government who questioned the protest that took place and resulted in the resignation of Minister Dharmendra Pradhan. Let's begin by listening in to what Mohan Bhagwat had to say.
1: Ujjain ji ne andolan nahi karna chahiye wagaira aisa main karunga nahi. Lekin kaise karna kya karna democracy mein iske tarike bhi bataye hai. Ab constitution humko jinhone diya डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अगर दो स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो एक कैसे करना क्या करना उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए. और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही.
2: बिल्कुल,
1: उसको ठीक करना चाहिए. एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए.
2: करेक्ट,
1: तब सब ठीक रहेगा.
3: कई बार ऐसे विषय आता है कि जैसे अभी प्रोटेस्ट में आंदोलन में हुआ था कि ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है उनपे कई बार जो इनोसेंट है उनके उनपे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था. तो ये सारे विषय के
1: और एक बात.
3: हाँ, आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए?
1: ये जो बातें है ना
3: जी,
1: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा. जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
3: जी.
1: लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा. मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं. आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं. आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था. वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा.
3: आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे. हाँ, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो. तो सर
1: इसमें वो मैं कह रहा हूं ना,
3: इसमें

0: People poured out on the streets, and the government's response made things worse.
1: And it was becoming a citizen-first democracy. And Rajiv Goswami in flames, and I think that, again, encapsulated the Mandel agitation.
2: आप ये बिल को लाना चाहते हैं हमारा जन लोकपाल बिल तो पार्लियामेंट में इस बल के बिल के बारे में चर्चा शुरू कर दो
3: आदि प्रोटेक्टिंग अस ऑलरेडी डिस्ट्रॉइंग अस
1: देयर वाज अ ह्यूज आउटपोरिंग ऑफ एंगर अगेंस्ट वुमेन सिक्योरिटी
4: कौन है बेचारों को बात करते कुछ तो बताइए

0: Okay, but our big story that we are breaking at the moment, a short while ago, Mohan Bhagwat, the RSS Sarsang Chalak, spoke at length on the Gen Z protest for the first time in an outreach at a convention held by a students group, IMUN. Mohan Bhagwat said, protest is legitimate. It is a means of dialogue. The students' grievances, he said, importantly, are genuine. The education system does need improvement, is what Mohan Bhagwat said. Said protest must be within the constitution's ambit. Today's generation is the most honest. Cannot talk on the crackdown without info, but it is not anti-national to protest. And Andolan is legitimate. So clearly, Mohan Bhagwat making his views clear, and many would say that they are rather different from what other RSS leaders have said, or indeed even members of the government who questioned the protest that took place and resulted in the resignation of Minister Dharmendra Pradhan. Let's begin by listening in to what Mohan Bhagwat had to say.
1: Ujjain ji ne andolan nahi karna chahiye wagera aisa main karunga nahi, lekin kaise karna kya karna democracy mein iske tarike bhi bataye hain. Ab constitution humko jinhone diya डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का, अगर दो स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो एक कैसे करना क्या करना उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए. और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेंजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
2: बिल्कुल
1: उसको ठीक करना चाहिए. एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए.
2: करेक्ट,
1: तब सब ठीक रहता.
3: कई बार ऐसे विषय आता है कि जैसे अभी प्रोटेस्ट में आंदोलन में हुआ था कि ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है उनपे कई बार जो इनोसेंट है उनके उनपे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था. तो ये सारे विषय के
1: और एक बात,
3: हाँ आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए?
1: ये जो बातें है ना
3: जी,
1: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
3: जी.
1: लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा. मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं. आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं. आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था. वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा.
3: आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो. तो सर
1: इसमें वो मैं कह रहा हूँ ना,
3: इसमें
1: मैं कह रहा हूँ हाँ. कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं
3: जी,
1: अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
3: जी सर.
1: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है. वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है तो होना चाहिए. और जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता. विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है.
3: अरे वाह बढ़िया है.
1: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है. जैन जी की बात है तो अभी जो हुआ है ग्रीवेंस तो जेनाइन है,

0: clear, and many would say that they are rather different from what other RSS leaders have said, or indeed even members of the government who questioned the protest that took place and resulted in the resignation of Minister Dharmendra Pradhan. Let's begin by listening in to what Mohan Bhagwat had to say.
1: उज्जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना क्या करना डेमोक्रेसी में इसके तरीके भी बताए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, अगर दो स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो ये कैसे करना क्या करना उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए। और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
2: बिल्कुल
1: उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए,
2: करेक्ट,
1: तब सब ठीक रहता।
3: कई बार ऐसे विषय आता है कि जैसे अभी प्रोटेस्ट में आंदोलन में हुआ था कि ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है उनपे कई बार जो इनोसेंट है उनके उनपे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था, तो ये सारे
1: अब
3: ये सारे विषय के मेरे,
1: और एक बात,
3: हाँ आपको आपका क्या मानना ये होना चाहिए,
1: ये जो बातें है ना
3: जी,
1: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
3: जी।
1: लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूँ। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा।
3: आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो, तो सर
1: इसमें वो मैं कह रहा हूं ना,
3: इसमें
1: मैं कह रहा हूं
3: हाँ।
1: कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं
3: जे.
1: अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
3: जी सर,
1: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
3: अरे वाह बढ़िया है,
1: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। जैन जी की बात है तो अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। और मेरा अनुभव ऐसा है जैन जी के बारे में, हम लोग जैन जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे, तो उस समय की परिस्थिति। अभी जैन जी वो जैन अल्फा वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए।
0: ओके सो देयर यू हर्ड मोहन भागवत सिंह, डायलॉग इसेंशियल, इट इज नॉट एंटी नेशनल टू प्रोटेस्ट, दीज आर सिटीजंस ऑफ द कंट्री। ज्वाइनिंग मी नाउ are four young members of the audience who are associated with IMUN from different parts who've joined me to get their reactions. I am joined here by Yatharth. He's from Agra.